सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के ठीक 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है, अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए वंदना कार्यक्रम। ज्ञान ज्योति। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल व्यर्थ या अनुचित नहीं है, परंतु हमें इसके द्वारा सिखाए गए गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों और गुरुजनों के प्रति प्रेम और सेवा का पाठ सीखना चाहिए, ताकि वे हमें उन्नति करने और सुखी जीवन बिताने का आशीर्वाद दें। एक संत का कथन है, सुख और शांति रूपी प्रकाश के लिए न बाहर और न उससे परे देखो, अपितु अपने ही भीतर देखो। जैसे फूल प्रातःकालीन प्रकाश को लेने के लिए अपनी पंखुड़ियां खोल देता है, उसी तरह सत्य ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को जागरूक बना लो। ज्ञान ज्योति। जी तो आइए हम भी अपनी आत्मा को जागरूक बनाते हैं, ईश्वर भक्ति में मन लगाते हैं। वंदना कार्यक्रम में भजनों की शुरुआत करते हैं।

जी हाँ, प्रभु को बुलाते हैं हम और प्रभु आते भी हैं, परंतु प्रभु वास वहीं पे करते हैं जिनका मन शुद्ध होता है। अगर हम मन को काबू में कर लेना तो ईश्वर का निवास वहाँ पे हो जाता है, परंतु यही कार्य अत्यंत दुष्कर है, मन को काबू करना। पर कोशिश हम कर सकते हैं अपने मन से राग द्वेष की भावनाएं निकालकर। तो आइए ये भावनाएं निकालते हैं और ये भजन सुनते हैं।

जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम। समय आपको बताएं सुबह के 6:32:55 हुए हैं। आइए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनते हैं माता की भेंट।

जी, अभी आप भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं और भक्ति क्रम में यूं ही आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ भाग 36।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मालिनी लंबियार और साथी संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: जी, कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम का समय रहता है और 8 समाचार प्रभात का अंक 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा और 8:35 से लेकर 9:20 तक विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठाइएगा। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 9:30 से लेकर 10 तक विविध भारती के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 10 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। 10:05 पर लघु वार्ता होगी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, इसमें आज जानकारी देंगे आपको मजदूरी रोजगार योजना की। महफिल कव्वाली कार्यक्रम में कुछ फिल्मी कव्वालियां हम आपको सुनाएंगे 10:15 पर। 10:45 पर लोक रंग कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुबह 11 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर दोपहर 12 तक सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। वनिता मंडल कार्यक्रम दोपहर 12 आप सुन सकते हैं। 12:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 से लेकर शाम 5 तक हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम होगा। युव मंच कार्यक्रम 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा और शाम 6 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिएगा सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। खेतीबाड़ी कार्यक्रम शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं। 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर भक्ति संगीत सुनिएगा। रौनका ग्राइंदिया कार्यक्रम 7:25 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:45 का समय रहता है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करते हैं। जी, रात्रि 8 से लेकर 8:45 तक आनंद आप उठा सकते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9 न्यूज़ एट 9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 9:15 से लेकर 10 तक विविध भारती के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे। जी, रात्रि 10 आनंद उठाइएगा शास्त्रीय संगीत का और 10:30 पर चांदनी रातें कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 11 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। जी, तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में और उसके बाद 7 हिंदी में।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुं आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.8 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

बिल्कुल जी, भोर होने के साथ साथ हम भी हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम लेकर सुप्रभात हमीरपुर, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ भावना कतना आपके साथ। तो आइए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत एक नेक विचार के साथ। नेक विचार किसको कहते हैं? नेक विचार, सुविचार उसको कहते हैं जो हमारे मन में उतरते ही हमें बदलाव ले आए। जी हाँ, और बदलाव तभी आता है जब हम अपने मन को जो है वो हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं, आशामय बनाए रखते हैं। क्योंकि ये जो उम्मीद है, ये आशाएं हैं ना, यही हमें जीना सिखाती हैं। अगर हमारे अंदर की आशा उम्मीद ही मर गई तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आशा जो है तूफानों को रोकती नहीं, लेकिन मनुष्य के भीतर इतना साहस निश्चित जगा देती है कि वो तूफान के बीच भी एक और कदम बढ़ा सके। संसार के सबसे अंधकारपूर्ण क्षणों में आशा किसी विजेता की तरह नहीं आती, वो एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह आती है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि अंधकार सर्वशक्तिमान नहीं है। हमेशा संसार की सबसे बड़ी त्रासदी गरीबी नहीं बल्कि आशा का मर जाना है। एक गरीब मनुष्य जीवित रह सकता है यदि उसके भीतर ये विश्वास बचा हो कि आने वाला दिन आज से बेहतर हो सकता है। पर जिस क्षण मनुष्य अपने भविष्य से विश्वास खो देता है, उसी क्षण उसके भीतर का सबसे सुंदर भाग धीरे धीरे मरने लगता है। जो मनुष्य संसार की सारी कठिनाइयों के बावजूद दया करना नहीं छोड़ता, उसके भीतर आशा का स्रोत कभी नहीं सूखता। संसार पूर्ण नहीं है, यहाँ अन्याय, अभाव, छल,

कुटिलता आदि सब हैं और ऐसी पीड़ाएं भी हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार लगता है मानो बुराई की शक्ति अच्छाई से कहीं अधिक प्रबल हो गई है। लेकिन यदि ऐसा वास्तव में होता ना, तो अब तक मनुष्य जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होता। सभ्यता इसीलिए जीवित रहती है क्योंकि हर युग में कुछ लोगों ने अंधकार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। कभी कभी जीवन हमें लंबी सर्दियों से गुजारता है ताकि हम बसंत का वास्तविक अर्थ समझ सकें। यदि मनुष्य ने दुख ना देखा होता तो वो करुणा का मूल्य समझ ही नहीं पाता। यदि उसने अकेलापन ना झेला होता तो प्रेम की ऊष्मा इतनी अमूल्य ना लगती। और यदि उसने अंधकार का अनुभव न किया होता तो वह एक छोटी सी रोशनी के चमत्कार को कभी नहीं पहचान पाता। इसीलिए जब भी जीवन आपको ये विश्वास दिलाने लगे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब याद रखिए कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, वो सुबह को रोक नहीं सकती। मनुष्य बार बार टूटा है और फिर उठ खड़ा हुआ है, यही उसकी सबसे बड़ी महिमा है। तो भाई, जीवन के अभावों के बीच जब भविष्य धुंधला लगने लगे, तब अंतरात्मा में जलती आशा की वो छोटी सी मोमबत्ती हमारे भीतर का साहस जगाती है। तमाम अन्यायों और छल के बावजूद यदि हम दया, करुणा और विश्वास को जीवित रखें, तो रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो आने वाली अलौकिक सुबह और बसंत के नए उजाले को कभी नहीं रोक सकती। इसीलिए अपने मन में हमेशा उम्मीद को जगाए रखिए। और अब हमारे श्रोताओं को हमसे उम्मीद ये है कि हम उनका मनोरंजन भी करेंगे सात सुरों के संगम के साथ। तो आइए फिर देर किस बात की, आइए संगीत सुनते हैं सात सुरों के संगम में।

0: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं संपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं और अंतराल से पहले जो कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना, एक धुन प्यार की, जी हाँ, इसी फिल्म का नाम था, आवाजें विपिन सचदेवा अनुराधा पौडवाल की थी। और अब आपको बताएं, सुबह के 7:18 हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इतिहास की बात करते हैं। आज 3 जुलाई का दिन है और आज के दिन के साथ कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए आपको बताते हैं।

जी, आज 3 जुलाई की बात हम कर रहे हैं। 1661 की बात करें तो पुर्तगाल ने मुंबई और तंजौर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया था। मुगल सम्राट के आदेश पर 1746 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को फांसी दे दी गई थी और मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया था। अमेरिका ने 1819 में पहला बचत बैंक बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को 1889 में गिरफ्तार कर लिया गया था आज ही के दिन 3 जुलाई को। और स्टॉक्स एक्सचेंज दाउ जोन्स ने 1884 में अपना पहला स्टॉक इंडेक्स प्रकाशित किया था। न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार 1886 में बना था। और आज ही के दिन 3 जुलाई को इतावली वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1897 में लंदन में रेडियो का पेटेंट करवाया था। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार भी आज ही के दिन किया था। और आज ही के दिन सन 1928 में लंदन में पहली बार रंगीन टीवी का कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। 3 जुलाई 1972 की बात हम करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के बीच 1972 में कश्मीर संबंधी निशस्त्र समझौता भी आज ही के दिन हुआ था। कोलकाता में दूसरे हावड़ा पुल के नाम से मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण 1989 में शुरू हुआ था। और आज के दिन 3 जुलाई को मक्का से मीना जाने वाली सुरंग में 1990 को भगदड़ मचने से 1426 हज यात्रियों की मौत हुई थी। रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत 1992 में आज के दिन हुई थी। महेश भूपति और मेरी पियर्स ने वर्ष 2005 में विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब भी 3 जुलाई के दिन जीता था। और स्पेन ने वर्ष 2006 में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई थी। और आज के दिन 3 जुलाई को परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का निधन 1999 में हुआ था। और दोस्तों, आज के दिन को यानी कि 3 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में। जी हाँ, ये हर साल 3 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक बैग के अत्यधिक इस्तेमाल से पर्यावरण, वन्य जीवों और समुद्री जीवन को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि कैसे कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग सैकड़ों सालों तक कचरे के रूप में पर्यावरण में रहते हैं। और इसके तहत प्लास्टिक की थैलियों के तहत इस प्लास्टिक की थैलियों की जगह अगर हम कपड़े, जूट या कागज़ से बने थैलों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहता है। और इस आज के दिन इसी के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसकी शुरुआत आपको बताएं, जीरो वेस्ट यूरोप के बैग फ्री वर्ल्ड अभियान के द्वारा की गई थी ताकि प्लास्टिक मुक्त दुनिया की ओर कदम बढ़ाया जा सके। और ये आज हम सब की ज़रूरत है। हम सब को जागरूक होना है कि हम प्लास्टिक को ना कहें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, और इस्तेमाल करें प्लास्टिक की जगह अन्य चीज़ों की। और ये सब हम तभी करेंगे जब हम सब इसकी जिम्मेदारी लेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे तभी। क्योंकि सरकार ने तो कई रूल बनाए हैं लेकिन उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है और उन

0: इसके बारे में अवेयर करें कि प्लास्टिक जब हम यूज़ करते हैं तो वो कितना हानिकारक होता है। तो इसके बारे में, अगर इसके नुकसान के बारे में सबको पता होना तो वो सब प्लास्टिक को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जागरूक होना है। वर्ष 2026 यानी कि इस साल का विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का, वो है एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति एक स्थायी भविष्य की ओर, जो नागरिकों से पुनः उपयोग योग्य थैलों को अपनाने और दैनिक जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने का आग्रह करता है। और देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 की बात हम करें तो महज एक प्रतीकात्मक दिवस नहीं है, ये एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक आह्वान है। पुनः प्रयोज्य बैगों का उपयोग करने जैसे व्यक्तिगत कदमों से लेकर सफाई अभियान और जागरूकता अभियान जैसी सामुदायिक पहलों तक हर कोई एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण में योगदान दे सकता है। तो भाई, हम पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें और ऐसी स्थायी आदतें बनाएं जो हमारे ग्रह के लिए लाभकारी हों। तो आइए 3 जुलाई 2026 से शुरू करके हर दिन को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। चलिए, ये तो हमने आपके साथ साझा की 3 जुलाई के साथ जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, और अब आइए वर्तमान के साथ जुड़ते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
7: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
9: RBI कहता है,
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: जी दोस्तों, अंतराल से पहले जो गीत हमने आपको सुनाया पारस फिल्म से, हमने उस गीत के लिए था मुकेश लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। सुबह के 7:35 हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्रों से ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहली खबर की हम बात करें तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने की रफ्तार जो है और पंजीकरण में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रफ्तार को देखते हुए उम्मीद है कि 2027 से 2030 के बीच करीब 35 लाख और EV पेट्रोल वाहनों की जगह लेंगी। SBI ने एक रिपोर्ट में कहा कि अगर 2030 तक घरेलू वाहन बाजार में EV की हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक पहुंच जाती है, तो इससे भारत को कच्चे तेल के आयात बिल के मोर्चे पर 1,00,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च जून अवधि में देश में हर महीने में औसतन 2.3 लाख ई वाहनों का पंजीकरण हुआ, जो 2025 में औसत 1.3 लाख था, यानी हर माह ई वाहनों की संख्या में करीब 1,00,000 की बढ़ोतरी हुई है। और सुझाव ये दिए जा रहे हैं जिनसे देश में तेजी से होगा ई वाहनों का विस्तार, तो रिपोर्ट में चार्जिंग इंफ्रा और खासकर फास्ट चार्जर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अभी देश के चार्जिंग नेटवर्क में फास्ट चार्जर की हिस्सेदारी सिर्फ 30% है। 10 से 15 साल का एक व्यापक EV रोडमैप बनाना होगा, जिसमें नीतियां और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्पष्ट लक्ष्य शामिल हों। और रिपोर्ट में EV क्रेडिट गारंटी फंड बनाने, ई वाहनों की सरकारी खरीद बढ़ाने और ग्रीन मोबिलिटी के लिए एक अलग श्रेणी शुरू करने जैसे उपाय भी सुझाए गए हैं। जी, बात करें वेतनभोगी कर्मचारियों की, तो अभी तक EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था, और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था। मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया। इसने पुरानी EPF योजना 1952 की जगह ले ली है। इसके तहत अनिवार्य कर्मचारी योगदान को स्पष्ट रूप से 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया गया है, यानी अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपये का 12% यानी 1,800 रुपये ही EPF अंशदान लेना जरूरी है। 1,800 रुपये से अधिक का योगदान तभी जारी रह सकता है जब कर्मचारी स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे। वहीं बात करें वीबी जी राम जी की, तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट यानी वीबी जी राम जी लागू कर दिया है। नया कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो गया। इसके साथ ही मजदूरी की संशोधित दरें भी लागू हो गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब इस योजना के तहत अधिसूचित मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। मनरेगा में राष्ट्रीय औसत मजदूर 298.8 रुपए प्रतिदिन थी, वीबी जी रामजी में ये बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है। नई योजना में रोजगार गारंटी भी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगले 2-3 महीने तक कम रहीं तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियां अभी पश्चिम एशिया संकट के दौरान 2 महीने पहले ऊंचे दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन कर रही हैं, इसीलिए हालिया कीमत गिरने का लाभ उपभोक्ताओं को तुरंत नहीं मिल पाएगा। बता दें कि नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई से अपने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर घटा दिए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि नायरा ने संकट के दौरान अपने दाम बढ़ाए थे, इसीलिए अब उन्होंने वही बढ़ोतरी वापस ली है। सरकारी तेल कंपनियों ने उस समय कीमतें नहीं बढ़ाई थी। जी, आपको बताएं अमरनाथ यात्रा के बारे में, तो आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु 3,888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को जम्मू के भगवती बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। जत्थे में 4,822 तीर्थ यात्री शामिल थे जो 259 वाहनों के सुरक्षा घेरे में रवाना हुए। श्रद्धालुओं का उत्साह और सुरक्षा इंतजाम दोनों पिछले साल से ज्यादा हैं। हालांकि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। 2 दिन में बालटाल बेस कैंप से गुफा तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक दोनों रूट पर तेज बारिश की आशंका जताई है। बालटाल से गुफा तक 12 जगह वाटरप्रूफ डोम शेल्टर शेड बनाए गए हैं। संगम और पवित्र गुफा के पास भी बड़े शेल्टर हैं। ये सुविधा इमरजेंसी के लिए है। यात्रियों को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटना होगा। हर एक 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ भी लगाए गए हैं। डोमेल रूट पर 4 जगह स्क्रीन पर मौसम का अपडेट मिलेगा। और अब बात करें मौसम की, तो मॉनसून ने गुरुवार को दिल्ली और राजस्थान में भी दस्तक दे दी। अब मॉनसून देश के सभी राज्यों तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में मॉनसून गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बचे हिस्सों में आगे बढ़ने के साथ राजस्थान के भी कुछ और जिलों में आगे बढ़ेगा। मॉनसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दी थी। 28 दिन बाद मॉनसून देश के 90% से अधिक हिस्सों को कवर कर चुका है। मॉनसून के देश को 100% कवर कर लेने की सामान्य तारीख जो है वो 8 जुलाई है। और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र जो है वो बन चुका है। मध्य प्रदेश के पास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और इन सब सिस्टम से पूर्वी मध्य और उत्तर भारत में अगले कई दिन झमाझम बारिश के आसार हैं। जी, और हिमाचल प्रदेश की बात हम करें तो प्रदेश में मानसून की एंट्री होते ही भारी बारिश ने अपना तांडव दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है। 2 दिनों से चल रही बारिश के कारण प्रदेश में जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फ पिघलने से आई बाढ़ से भी जनजीवन जो है वो प्रभावित हो गया है। आगे के बारे में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताज़ा वेदर बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को यानी कि आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 4 जुलाई को मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में येलो अलर्ट की चेतावनी है। 5 और 6 जुलाई को मंडी व सिरमौर जिला में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जी, ये थी समाचार पत्रों से आज की ताज़ा तरीन खबरें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं मनोरंजन की तरफ, एक प्यारे से गीत की तरफ।

मोहम्मद रफ़ी की सुरीली सी आवाज़ में गैम्बलर फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनाया। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे खेल खबरों के साथ। सबसे पहली खेल खबर की हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के बेहद रोमांचक और नाटकीय मुकाबले में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को हराया। मैच के 85 मिनट तक 0-2 से पिछड़ रही बेल्जियम की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी क्षणों में कप्तान यूरी टिलेमेंस ने के विवादास्पद पेनल्टी गोल ने बेल्जियम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। अब उसका सामना अमेरिका से होगा। ये मौजूदा वर्ल्ड कप में 11वीं कमबैक जीत रही, जो एक टूर्नामेंट में रिकॉर्ड है, और ये वर्ल्ड कप इतिहास में सिर्फ 10वीं बार है जब किसी टीम ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद पलटवार करते हुए मैच जीता हो। वहीं टिलेमेंस का गोल वर्ल्ड कप का सबसे देरी से होने वाला मैच विनिंग गोल है। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। 39 वर्षीय जोकोविच ने महज 98 मिनट में सित्सिपास को 6-3, 6-4, 6-2 से मात दी और ये विंबलडन में उनकी 104वीं जीत थी और सित्सिपास के खिलाफ उनकी ये लगातार 12वीं जीत है। इस मैच में जोकोविच अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में दिखे। बैडमिंटन की बात हम करें तो भारतीय बैडमिंटन संघ ने घरेलू सर्किट में वर्ल्ड फेडरेशन का नया 3x15 स्कोरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। मैच 21 की जगह 15 अंकों के बेस्ट ऑफ 3 गेम्स के होंगे। बदलाव 7 जुलाई से एर्नाकुलम में शुरू हो रहे सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट से प्रभावी होगा। नए नियम के तहत 14 ऑल होने पर 2 अंकों की लीड जरूरी होगी, जबकि 20 ऑल होने पर 21वां पॉइंट निर्णायक होगा। मैच में ब्रेक अब 8 अंकों पर मिलेगा। जनवरी से ये वैश्विक स्तर पर लागू होगा। बात करें चेस की तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के जागरेब चरण की शानदार शुरुआत करते हुए टॉप सीड जर्मनी के विंसेंट कीमर को सिर्फ 26 चाल में हरा दिया। प्रागानंदा ने आक्रामक खेल दिखाया और लगातार दबाव बनाकर 2 अंक हासिल किए। दूसरे राउंड में उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम वाशिये लेग्रेव से ड्रॉ खेला। वहीं डी गुकेश ने पहले राउंड में हारने के बाद दूसरे में क्रोएशिया के इवान सारिच को हराया। टोक्यो ओलंपिक के 100 मीटर चैंपियन इटली के लेमेंट मार्सेल जैकब्स ने ऑस्ट्रियन ओपन में 100 मीटर दौड़ 9.67 सेकंड में पूरी कर करियर का सबसे तेज समय निकाला। हालांकि रेस के दौरान प्लस 4.1 मीटर प्रति सेकंड की टेलविंड पीछे से चलने वाली हवा रही, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के निर्धारित प्लस 2.0 मीटर प्रति सेकंड सीमा से अधिक है। इसी कारण ये समय आधिकारिक रिकॉर्ड या पर्सनल बेस्ड के रूप में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में 100 मीटर में उनसे तेज समय केवल उसेन बोल्ट ने दर्ज है। श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजी रंग में नहीं दिखी। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने के बाद भारतीय टीम सिर्फ 5 विकेट ले सकी और दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 288 रन बना दिए। स्टंप्स के समेत कप्तान सहन अराची जगे और चमिका गुनासेकरा क्रीज पर थे। इससे पूर्व वीरा सिंगे, नुवानिंदु और अंजल भंडारा अर्धशतक से चूक गए। भारत की ओर से सारांश जैन और यश ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि एक अन्य सफलता गुरनूर बराड़ को मिली। आकिब नबी और जीशान अंसारी खाली हाथ रहे। जी तो ये कुछ खास खेल खबरें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब बात कर लेते हैं विज्ञान पर चर्चा।
जी हाँ, विज्ञान की बात हम करें तो देखिए, भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब लॉन्च के लिए तैयार है। स्काई रूट एरोस्पेस ने इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त तक की लॉन्च विंडो घोषित की है। ये भारत की निजी स्पेस क्षमता की पहली बड़ी परीक्षा है। इसकी सफलता से छोटे उपग्रहों को ज़रूरत के मुताबिक और ज़्यादा तेजी से अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। इससे खेती, न संचार, नेविगेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी सेवाएं और मजबूत होंगी। अगर विक्रम 1 सफल रहता है तो भारत निजी क्षेत्र के दम पर ऑर्बिट तक पहुंचने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। विक्रम 1 की लॉन्चिंग से पहले स्काईरूट एरोस्पेस के फाउंडर पवन कुमार चंदाना ने बताया कि अगर फ़ोन पर मैप्स आप चलाते हैं या डिजिटल पेमेंट करते हैं तो इसके पीछे भी अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट काम कर रहे होते हैं। मैप्स आपकी सटीक लोकेशन सैटेलाइट में मिले नेविगेशन सिग्नल के आधार पर बताते हैं, जबकि यूपीआई जैसी सेवाएं जो हैं वो इंटरनेट और संचार नेटवर्क पर चलती हैं, जिन्हें दूर दराज के इलाकों में सैटेलाइट भी मजबूती देते हैं। जी, अंतरिक्ष में बढ़ते सैटेलाइट नेटवर्क के साथ लॉन्च की मांग भी कई गुना बढ़ेगी। अभी भारत में ज़्यादातर सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करता है, लेकिन आने वाले वर्षों में सैटेलाइट की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में इसरो चंद्रयान, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बड़े मिशनों पर ध्यान देगा, जबकि स्काईरूट जैसी निजी कंपनियां छोटे सैटेलाइट को बार बार और ज़रूरत के मुताबिक कक्षा में पहुंचाने का काम करेंगी। इससे मौसम, इंटरनेट, खेती, आपदा प्रबंधन और संचार जैसी सेवाएं पहले से तेज और सटीक हो सकेंगी। और पहले एक बड़ा और महंगा सैटेलाइट बनाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता था, और अब दुनिया सैकड़ों छोटे सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार कर रही है। जी, ये हमारी बदलती स्पेस टेक्नोलॉजी का नया चेहरा है, छोटे सैटेलाइट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से बहुत छोटे हो चुके हैं, जो काम पहले बस जितने बड़े सैटेलाइट करते थे, अब वो छोटे सैटेलाइट भी कर सकते हैं। छोटे सैटेलाइट ज़्यादा बेहतर कवरेज और भरोसेमंद सेवा देते हैं। तीसरी बड़ी वजह है कि इनकी उम्र 5 से 8 साल होती है, जिसके बाद इन्हें बदलना पड़ता है, यानी लगातार नए सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च करने होंगे। और स्पेसएक्स से अलग कैब मॉडल पर स्काईरूट है। जी हाँ, स्काईरूट की तुलना स्पेसएक्स से होती है, लेकिन दोनों का मॉडल जो है वो अलग है। इसे ट्रेन और कैब से समझ सकते हैं। जैसे कि ट्रेन तय समय पर तय स्टेशन तक ही ले जाती है, लेकिन अगर आपको किसी खास समय पर किसी खास जगह पहुंचना हो तो कैब बेहतर विकल्प है। स्पेस में भी यही फर्क है। स्पेसएक्स का रॉकेट ट्रेन की तरह तय कक्षा में सैटेलाइट छोड़ता है, जबकि विक्रम 1 कैब की तरह ज़रूरत के मुताबिक मनचाही कक्षा में सैटेलाइट पहुंचा सकेगा। अब ऐसे ऑन डिमांड लॉन्च की मांग जो है वो तेजी से बढ़ेगी। जी, ये तो हुई विज्ञान पर चर्चा। और अब सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में एक गीत आइए सुन लेते हैं।

0: मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में आपने सुना लाल दुपट्टा मलमल का, इस फिल्म का ये गीत। और इसी के साथ अब आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, अब समाचार प्रभात का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
8: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
7: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. We have a report.
9: The Election Commission said in a statement that it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 p.m. on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. Such disputes are governed by the Election Symbols Reservation and Allotment Order, under which the Commission examines rival claims, supporting documents and submissions from the contending factions before taking a decision where necessary. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. Early on Wednesday, Iran's Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi issued a sharp warning to the United States. In a social media post, Arakchi urged President Donald Trump to restrain its close ally Israel from threatening Iran after Israeli Defense Minister Israel Katz said that Iran's supreme leader Mojtaba Khamenei was marked for death. He said any threat against Iran's leadership would receive a strong response. Iran is scheduled to hold funeral ceremonies for former supreme leader Ali Khamenei from July 4th to July 9th in Iran and Iraq. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnan and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran Grand Ayatollah Syed Ali Khamenei. Minister of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic engagements. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the two-day orientation program for newly elected members of the West Bengal Legislative Assembly in Kolkata today. The program aims to familiarize newly elected members with various aspects of parliamentary and legislative functioning, including committee systems, financial oversight, parliamentary privileges and emerging digital initiatives in legislatures. The inaugural session of the program will be attended by Deputy Chairperson of the Rajya Sabha Harivansh, Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju, Chief Minister of West Bengal Shubhendu Adhikari and others. Ministry of Panchayati Raj will organise a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on recommendations of the 16th Finance Commission. The workshop will be chaired by Union Minister of Panchayati Raj Rajiv Ranjan Singh Lallan Singh in the presence of Union Minister of State Professor S.P. Singh Baghel. During the workshop, the discussions will focus on the operational guidelines for implementation of the 16th Finance Commission, rural local body grants issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. The annual Shri Amarnath Yatra began this morning from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally formed eyes Shivling. The Yatra will culminate on August 28th, coinciding with the festival of Raksha Bandhan. The first batch of pilgrims comprising more than 4,800

0: हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर के दौरान दुर्घटना, भूस्खलन, सड़क जाम या फिर अन्य आपात स्थिति आने पर अब सड़क उपयोगकर्ता टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 यानी कि 1033 पर तुरंत सूचना दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने हिमाचल में मॉनसून सीजन के मद्देनज़र वाहन चालकों और यात्रियों से ये अपील की है। प्राधिकरण ने मॉनसून को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। NHAI ने संवेदनशील और दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे क्षेत्रों में JCB सहित आवश्यक मशीनरी, तकनीकी विशेषज्ञों और फील्ड स्टाफ की तैनाती कर दी गई है ताकि सड़क बंद होने या फिर अन्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पिछले वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित स्थानों को भी विशेष निगरानी में रखा गया है। यहाँ ढलानों को स्थिर करने, रिटेनिंग वॉल बनाने, जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने और कटाव रोकने के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पुलों और अन्य सुरक्षात्मक ढांचों के निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। NHAI ने जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय भी बढ़ाया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में यातायात जल्द बहाल किया जा सके। यात्रियों से भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन की अपील की गई है। NHAI हमीरपुर परियोजना निदेशक राकेश यादव ने कहा कि मॉनसून के दौरान हाईवे पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से लागू की गई संशोधित मजदूरी दरों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए दैनिक मजदूरी 247 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 309 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दी गई है, जो क्रमशः लगभग 21.5% और 21.3% की वृद्धि है। अनुराग ठाकुर ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से हिमाचल सहित कई राज्यों के लाखों ग्रामीण श्रमिकों की आय में सीधा इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई मजदूरी ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और ये निर्णय प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण, अंत्योदय और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त उदाहरण है। अगली खबर की बात हम करें तो वन वृत्त हमीरपुर में वन भूमि के सर्वे, निशानदेही, राजस्व रिकॉर्ड की अपडेशन और अन्य संबंधित मामलों के समाधान के लिए राजस्व विभाग ने इनसे सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगौर, पटवारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इन पदों के लिए 20 जुलाई तक वन वृत्त कार्यालय हमीरपुर में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ सरकारी अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयनित कर्मियों की तैनाती वन मंडल हमीरपुर, ऊना और देहरा में की जाएगी। वन वृत्त हमीरपुर के अरण्यपाल निशांत मंडोत्रा ने बताया कि एक सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, एक कानून को और 3 पटवारियों को फिक्स मासिक मानदेय पर रखा जाएगा। इसमें नायब तहसीलदार को 60,000, कानून को 50,000 और पटवारियों को 40,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। आवेदक की आयु 1 जुलाई 2026 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा संबंधित ने राजस्व विभाग में कम से कम 5 वर्ष सेवा दी हो, साथ ही उसके खिलाफ कोई लंबित केस या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के जल विद्युत संसाधनों से अधिकतम आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए SJVNL को पूर्व में आवंटित 3 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। जी तो हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:35 हुए हैं, अब से लेकर 9:20 तक आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

द डर्टी पिक्चर, इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, कमाल खान का गाया हुआ, रजत अरोड़ा के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं माय फ्रेंड पिंटो फिल्म का ये गाना केके की आवाज़ में। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जाएगा प्यार।
1: सुखविंदर सिंह का गाया ये गाना आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था जयदीप सानी ने, धुन बनाई थी सलीम सुलेमान ने। फिल्म का नाम रब ने बना दी जोड़ी।

सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरजो की आवाज़ों में आपने सुना गुलजार का लिखा यह गीत, विशाल भारद्वाज का संगीत, फिल्म का नाम एक थी डायन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:19 हुए हैं। कुछ ही देर में 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी शिमला से।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय उद्घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थयात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देश भर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजनाएं सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों से राज्य का उचित हिस्सा हासिल करने और जनहित में इनके बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही 500 मेगावाट की डुग्गर जल विद्युत परियोजनाओं के नियमों और शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि एनएचपीसी ने परियोजना में बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में राज्य सरकार संशोधित परियोजना के अनुरूप हिमाचल को उचित लाभ सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े गतिरोध को समाप्त कर दिया है और अब इस परियोजना में प्रदेश कोई पूंजी निवेश नहीं करना होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को कल सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए

0: क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह लंबे समय से विभिन्न प्रकार के घरेलू हस्तशिल्प खाद एवं पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होने के बावजूद बाजार तक पहुंच सीमित रहने के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। अधिकांश समूह स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों या आसपास के बाजारों तक ही सीमित रहते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए DRDA ने समूहों को डिजिटल क्षेत्र प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना तैयार की। अभियान के दौरान समूहों का पंजीकरण करवाने के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन बिक्री की प्रक्रिया, उत्पादों की तस्वीरें, ग्राहकों से संपर्क, ऑर्डर, ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलंग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति में 11 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा केलांग में ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का शिलान्यास करेंगे। ये केंद्र ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर शोध और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संस्थान के शुरू होने से लाहौल स्पीति सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में भी ये केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रवि ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
3: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई। हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। रही बात रामपुर के इस कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
1: आकांक्षी जिला चंबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणित PHC बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला PHC चनेड़ प्रदेश का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 6 बार कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
4: राष्ट्रीय मूल्यांकन के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो गुणवत्ता मानकों, रोगी संतुष्टि, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल सेवाओं, प्रबंधन व्यवस्था तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। NQAS भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन सेवा प्रदायगी, रोग अधिकार, मानव संसाधन तथा संरचना, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन तथा स्वास्थ्य परिणामों सहित विभिन्न मानकों पर किया जाता है। इस तरह की उपलब्धियों से अवश्य ही जिला चंबा जल्द आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर आ पाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा से 49 सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जबकि बिजली के 42 ट्रांसफार्मर और 27 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को भी कहा गया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला एसजीवी

0: ने वापस ली जाएंगी तीन जल विद्युत परियोजनाएं संबंधी खबर आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। अमर उजाला की एक सुर्खी है, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जून में नहीं लगेगा फ्यूल चार्ज, ग्रामीण क्षेत्रों को मिले 162 डॉक्टर, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सरकार ने जारी किए आदेश, जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति, दैनिक जागरण हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, कानूनी हक मांगने पर कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, दैनिक भास्कर की एक खबर है, करुणामूलक नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, पांगी के घिसलधार में बादल फटने से तबाही, 6 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, भगवान शिव के जय घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा आज से शुरू, हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध, देशभर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:31 हुए हैं अब से लेकर 10 बजे तक, आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया, उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952, उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चुनाव सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: ढले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीज़ा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: फिल्म मेरे हुजूर लखनवी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शानो शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने।
1: बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी ये सच है, हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया ये भी सच है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि आप गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम, हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
2: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानियों ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, अब आप ये बताइए कि अख्तर।
2: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में किसी फिरदौस का नाम ले रहे थे।
1: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहम दिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जी, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं और अब लीजिए हम हाजिर हैं आज की लघु वार्ता के साथ। आज की लघु वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आपको जानकारी देंगे मजदूरी रोजगार योजना की।

जी, आज की लघु वार्ता के साथ हाजिर हूँ मैं भावना कतना। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इनका सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत मजदूरी और स्वरोजगार के लिए कोई एक अलग योजना नहीं है, बल्कि सरकार की मौजूदा रोजगार योजनाओं का 15% लक्ष्य और बजट अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किया जाता है। मजदूरी और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित होता है। ग्रामीण मजदूरी रोजगार के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को उनकी आजीविका और मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वरोजगार योजनाओं की बात करें तो इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री रोजगार सृजन

निरंतर आजीविका के लिए लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर आप स्थानीय शहरी निकायों, नगर निगम या फिर नगर परिषद में संपर्क करके इस योजना के लिए अगर आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।

परिवार को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी NREGA ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमजोर वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला प्रधान परिवार और अन्य हाशिए पर स्थित समूह शामिल हैं, इन तक पहुंचकर गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के महत्व को पहचाना जाता है। ये योजना पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करके सामुदायिक भावना और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। महात्मा गांधी NREGA योजना और कार्यान्वयन के लिए जमीन स्तर के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थानीय समुदायों को अपने विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार मिलता है और निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से ये योजना तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दीर्घकालिक समृद्धि की नींव रखती है। महात्मा गांधी NREGA सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है और पारिस्थितिकी संरक्षण और ग्रामीण अवसंरचना विकास में योगदान देने वाले कार्यों को प्राथमिकता देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने का प्रयास करता है। योजना के दृष्टिकोण का मूल आधार पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता है, जो ये सुनिश्चित करती है कि निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और सामाजिक लेखा परीक्षा, शिकायत निवारण और सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसे तंत्रों के माध्यम से लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। जी, इसके बारे में हम आपको बताएं, जी हाँ, अब तो VBG राम जी स्कीम हो गई है नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है, जो मनरेगा के तहत पहले 298.8 रुपये प्रतिदिन थी, यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। जी हाँ, 1 जुलाई 2026 से नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG राम जी अधिनियम 2025 पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में हो गया है। इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और साथ ही मजदूरी भी पहले से ज़्यादा मिलेगी। मनरेगा की जगह इस नए कानून के जमीन पर उतरते ही ग्रामीण परिवारों के बीच इस बात को लेकर भारी असमंजस और चिंता बनी हुई है कि अगर उनके पास इस नई योजना का VBG राम जी जॉब कार्ड नहीं है तो क्या उन्हें काम मिलेगा या नहीं। अगर आप भी इस बात को लेकर घबराए हुए हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक नए स्मार्ट जॉब कार्ड नहीं बन जाते तब तक मनरेगा के पुराने जॉब कार्ड पूरी तरह मान्य रहेंगे, यानी आपके पुराने मनरेगा कार्ड पर भी इस नई योजना के तहत न सिर्फ पूरा काम मिलेगा बल्कि साल में 125 दिन का रोज़गार और पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई मजदूरी का सीधा फायदा भी दिया जाएगा। जी, आपको बताते हैं कि इस योजना में क्या क्या बदलाव हुए हैं। अगर आपके पास नया VBG राम जी स्मार्ट जॉब कार्ड नहीं है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि EKYC वाले पुराने मनरेगा जॉब कार्ड तब तक चलते रहेंगे जब तक सभी लोगों को नए स्मार्ट जॉब कार्ड नहीं मिल जाते, यानी काम बिना रुके मिलता रहेगा। सरकार अब मनरेगा के पुराने जॉब कार्ड की जगह नए VBG राम जी स्मार्ट जॉब कार्ड जारी करेगी। इससे काम से जुड़ी जानकारी और रिकॉर्ड को आसान तरीके से संभाला जा सकेगा। नई योजना का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और पहले ये सीमा 100 दिन थी, यानी अब 25 दिन ज़्यादा काम मिलने का मौका होगा। नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़ाकर 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। पहले मनरेगा के तहत औसतन 298.80 रुपये मिलते थे,
यानी कि औसतन करीब 28.60 रुपए रोज ज्यादा मिलेंगे। सरकार ने 300 रुपए प्रतिदिन की नई बेस मजदूरी तय की है। इसका मतलब है कि योजना के तहत किसी भी जगह तय की गई मजदूरी इससे कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15-25% तक बढ़ोतरी की गई है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज़्यादा करीब 24.5% बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरियाणा में मजदूरी 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये और सिक्किम में ऊंचाई वाले गाँवों में 450 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। वीबी जी राम जी योजना लागू होने के बाद भी गांव में चल रहे काम नहीं रुकेंगे। ग्राम पंचायत की भूमिका पहले की तरह बनी रहेगी। जल संरक्षण, खेती, गांव की सड़कों, दूसरी जरूरी सुविधाओं और महिलाओं को रोजगार देने वाले जो कानून हैं वो लागू रहेंगे। और नई योजना को बिना किसी रुकावट के लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि जारी की है। इससे काम नहीं रुकेगा और मजदूरी समय पर मिल सकेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के लिए बजट की व्यवस्था कर ली है। वहीं 24 राज्यों ने नई योजना को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। सरकार का कहना है कि सभी जरूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन काम से वंचित ना रहे। नई योजना से गाँव में रोजगार बढ़ेगा, लोगों की कमाई मजबूत होगी और गांवों का विकास तेजी से होगा। जी हां, सरकार का कहना है कि वीबी जी राम जी योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना ही नहीं है, इसके जरिए गांवों में मजबूत ढांचा तैयार करना, लोगों की कमाई बढ़ाना, आजीविका को बेहतर बनाना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना भी है। अगर आप मनरेगा के लाभार्थी हैं और अभी तक नया वीबी जी राम जी स्मार्ट जॉब कार्ड नहीं मिला है तो आपका पुराना मनरेगा जॉब कार्ड फिलहाल पूरी तरह से मान्य रहेगा और उसी पर काम मिलता रहेगा। वहीं नई योजना के तहत अब ज़्यादा दिनों का रोजगार और पहले से ज़्यादा मजदूरी का फायदा भी मिलेगा। तो ये तो थी आज की लघु वार्ता, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज हमने आपको जानकारी दी मजदूरी रोजगार योजना की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:16 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है कुछ फिल्मी कव्वालियों के साथ। आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है महफिले कव्वाली।

0: आंचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
0: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
0: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
0: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं महफिली कव्वाली कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम की पहली कव्वाली आपने सुनी, दुश्मनी फिल्म से हमने इस कव्वाली को लिया था। आवाज़ें कुमार सानू, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की थी। और अब आपको सुना रहे हैं बंगिस्तान फिल्म की ये कव्वाली, जिसमें आप आवाज़ें सोना, अभिषेक और साथियों की सुनेंगे।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं महफिले कव्वाली कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की अगली कव्वाली आपको सुनाते हैं। ताजमहल फिल्म से हमने इस कव्वाली को लिया है। आवाजें इसमें आप सुनेंगे प्रीति उत्तम और कविता कृष्णमूर्ति की।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सारे श्रोताओं जो मेरा यानी कि शिवाली शर्मा दा प्यार भरा नमस्कार। देखा जी इस कार्यक्रम च हाँ करदे गल्लां बातां कन्ने लेई कन्ने आउंदे तुहां वास्ते प्यारे प्यारे लोक गीत कन्ने ते ना सौगी करदे तुहां दा मनोरंजन। तां चलिए कार्यक्रम दा पहला लोक गीत अहां तुहां जो सुनाणा।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक यहां हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: इस छोटी जी ब्रेक का बाद एक बारी तुहां दा फिर ते स्वागत करदे कार्यक्रम लोक रंग च। देखा विजय भंडारी दी आवाज च हां तुहां जो पहला ए लोक गीत सुनाया, ते चलिए अगला लोक गीत अहां तुहां जो सुनाना हुण पुष्पा कुमारी दी आवाज च।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: जी तो इस दे सौगी हुण कार्यक्रम लोक रंग इत्थे खत्म हुंदा। अपनी रेडियो हमसफर शिवाली जो दिया इजाजत। राम राम।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। एक पत्र में प्रधानमंत्री ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचा रही है और इसके बावजूद भी भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा ने यहां भी पंचायत प्रतिनिधियों को लालच देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। अनिरुद्ध सिंह ने यह कहा कि पाला बदलने वाले नेताओं, खासकर विधायकों की आज क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है।
1: भाजपा ज्वाइन भी करी है कि उनकी हालत क्या है, तो मैं समझता हूँ कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अपना घर अपना ही होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो अपना घर ही होता है। लोग लालच में आके ये लोग लोगों पर लोभ देते, इनके अपने लोग हैं नहीं, ना इनमें काबिलियत है मैं समझता हूँ इनके लोगों में, ना ही प्रशासन चलाने की ये लोग माता है।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
2: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई। हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। रही बात रामपुर के इस कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
0: उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि फोरलेन निर्माण के दौरान किसानों, राहगीरों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पठानिया शाहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में फोरलेन परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। पठानिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण के दौरान कुल्हों में पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसात के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। कैलाश फेडरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर ने शिमला में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस मौके पर इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं का आभार जताया और कहा कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बलदेव ठाकुर ने कहा कि वे कैलाश फेडरेशन के कामकाज को संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से गति देंगे। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स द्वारा संचालित व्हील्स और वेलर संचार शक्ति मोटरसाइकिल राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राइडर्स ने विश्व की सबसे लंबी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभियान के तहत 10 राइडर्स ने मात्र 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर करीब 10 किलोमीटर लंबी अटल टनल को 9:47 में पार किया। सिग्नल्स ऑफिसर इन चीफ व कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विवेश डोगरा ने कहा कि ये उपलब्धि कोर ऑफ सिग्नल्स के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है। उन्होंने इस उपलब्धि के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए संबंधित एजेंसियों का आभार भी व्यक्त किया। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। विभाग के अनुसार भारी वर्षा के कारण जल भराव, भूस्खलन, सड़कें बंद होने, यातायात बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 11:05 हुए हैं, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे ये गजल चंदन दास की आवाज में। पंकज उधास की आवाज।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए वह प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।
1: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

0: वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी शिवाली शर्मा और मेरे साथ हैं
1: भावना।
0: जी भावना, तो स्वागत करते हैं अपनी सभी बहनों का और कहते हैं उन्हें प्यार भरी
1: नमस्कार।
0: जी कैसी हैं भावना आप?
1: बिल्कुल ठीक शिवाली। और देखिए अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, मानसून की शुरुआत हो चुकी है
0: जी।
1: बारिश सुबह भी हो रही थी और अब पता नहीं, लेकिन मौसम खुशगवार होना तो देखिए अच्छा सा लगता है, मूड भी अच्छा होता है और बातें करने का अपनी सखियों से मन और भी ज़्यादा हो जाता है।
0: बिल्कुल जी, देखिए मौसम मौसम की तो बात ही क्या है। देखिए बरसात का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, जब बारिश होती है, बारिश हो रही है, गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने का दिल करता है। लेकिन उसके बाद देखिए बारिश के बाद जो गर्मी निकलती है और बहुत सारे आजकल के बरसात के मौसम में कई सारी चीज़ों को लेकर परेशानी हो जाती है ना, तो उससे भी हमें देखिए जूझना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। और वैसे ही देखिए बरसात के साथ साथ अगर बात करें अपने पर्यावरण की, तो देखिए हमारा जो पर्यावरण है इसका संरक्षण करना देखिए कितना ज़रूरी है। और वैसे भी तो देखिए हम मना रहे हैं वन महोत्सव दिवस, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है। ये वार्षिक सप्ताह भर चलने वाला एक वृक्षारोपण उत्सव इसे कहते हैं। और देखिए वैसे भी इस मौसम में तो कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ वो अच्छे होते हैं और जल्दी वो बड़े होते हैं। तो यही इन जो हमारे ये रहते हैं इनको मनाने का यही उद्देश्य रहता है कि किस तरह हम अपने पर्यावरण की जो है वो रक्षा करें, किस तरह उसकी संभाल करें और किस तरह सभी लोग एकजुट होकर अपने पर्यावरण को बचाएं।
1: बिल्कुल। और देखिए इसमें महिलाएं जो हैं वो एक अहम जिम्मेदारी निभाती हैं अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए।
0: जी
1: देखिए बोलते हैं ना कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही मिट्टी भी रुकती है। अब जैसे देखिए बारिश का मौसम जो है शुरू हो चुका है
0: जी,
1: और बारिश में मिट्टी कितना बहती है, और हिमाचल में खासतौर पे देखिए देखिए लैंड स्लाइडिंग होती है
0: जी,
1: बाढ़ का खतरा रहता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो मिट्टी को रोक के रखते हैं, मतलब कि ये होता है कि मिट्टी का बहाव कम होता है, पानी का बहाव कम होता है, तो बाढ़ जैसा अंदेशा जो है वो
0: कम हो जाता है।
1: और अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये पानी का बहाव जो है वो एकदम से घरों की तरफ नालों की तरफ चलता है और फिर ये बहाव हमने तो देखा ही है।
0: बिल्कुल भावना,
1: देखिए नुकसानदायक
0: आए दिन, और देखिए हर बरसात में कहीं ना कहीं हमें इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। तो देखिए अगर हम ये सब देखने सुनने के बाद भी अगर असर ना करें, इन बातों को नज़रअंदाज करें, तो उसका जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है और हम देख ही रहे हैं, है ना
1: जी, जी।
0: और वैसे भी अगर हम आज बात कर रहे हैं कि इस पर्यावरण संरक्षण में हमारी महिलाओं की भूमिका किस तरह से रहे, है ना, क्योंकि देखिए प्रकृति और नारी का संबंध बोलते हैं ना कि बहुत ही गहरा रहता है
1: जी।
0: कि जिस प्रकार जो हमारी प्रकृति हमें जीवन देती है ना, वैसे ही एक महिला अपने परिवार और समाज को स्नेह और संस्कार से भर देती है, है ना। तो इसके लिए पर्यावरण रक्षा में महिलाओं की भूमिका हमेशा से रही है, क्योंकि घर से ही हम शुरुआत करते हैं तो देखते ही हैं कि हमारी जो बहनें हैं कैसे घरों में छोटे

0: यहाँ से घर का संचालन करती हैं ना, अब देखिए किचन की ही बात करें
1: जी
0: तो गीला कचरा, सूखा कचरा अलग
1: जी
0: अलग रखना कितना इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल
0: और ये जब घर की गृहिणी ऐसा करना शुरू करती है
1: जी
0: और दूसरे अगर गलती से गीला सूखा कचरा अलग नहीं कर रहे हैं तो वो उन्हें डांटती है,
1: जी
0: तो धीरे धीरे और मेंबर्स की भी आदत हो जाती है कि नहीं, हमने गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग
1: जी
0: रखना है।
1: बिल्कुल
0: मतलब कि घर के और मेंबर्स की आदतें जो हैं वो वही वैसे मेंटेन करने में एक नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है।
1: बिल्कुल। और देखिए, घर से ही अगर बात करें तो घर से ही ये शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हम पानी का सोच समझ कर उपयोग करें,
0: जी
1: बिजली की बचत हो गई, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, और घर के कचरे की तो आपने बात ही अभी करी कही है कि
0: जी
1: किस तरह से
0: जी
1: इसका सही तरीके से निपटान करना है। तो इसी से देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में उनका सबसे बड़ा योगदान जो है वो रहता है। छोटी
0: बिल्कुल
1: छोटी चीज़ों को किस तरह से बचत करना, उसको संभाल के रखना। पानी की बचत देखिए कितनी ज़रूरी है आजकल।
0: जी।
1: किचन में देखिए, जब आप बर्तन धोती हैं तो कितना पानी आप यूज़ करती हैं, खाने के लिए बनाती हैं, तो हर एक चीज़ का माप तोल तो यहीं से पर्यावरण की जो है वो एक पहल शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल। और देखिए घर की नारी को हम देखें ना, अगर वो पानी की बचत करती है
1: जी
0: तो वो दूसरों को भी वही समझाएगी,
1: जी
0: वो बिजली की बचत करेगी तो वो दूसरों को भी वैसे ही
1: बिल्कुल
0: बिजली कम करने की ही हिदायत देगी और
1: जी
0: उनको ज़्यादा अननेसेसरी बिजली उपयोग करने से रोकेगी।
1: जी
0: तो मतलब बच्चों में ये धीरे धीरे ये आदतें जो हैं वो विकसित हो जाती हैं और आगे
1: जी
0: चलकर वो भी ऐसा ही करने लगते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: मतलब ये सारा जो जिम्मेदारी आ जाती है वो नारी पर ही आ जाती है, और अगर नारी पर्यावरण मित्र है
1: जी
0: तो वो औरों को भी उसमें ढाल ही लेती है।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही देखिए, छोटे छोटे बदलाव पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जैसे भावना, आपने देखा होगा कि आजकल जूट के थैले चले हुए हैं, तो उनका
0: जी
1: इस्तेमाल ज़्यादा अगर हम करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।
0: बिल्कुल
1: भोजन की बर्बादी रोकना ये सबसे बड़ा कारण है, और रसोई का जो भी जैविक कचरा है, खाद बनाना एकल उसका उपयोग, प्लास्टिक से बचना,
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों से मिलती जुलती हैं, और इन्हें संभाल कर रखना, इनका ये सब करना एक महिला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है
0: और
1: ना।
0: वैसे भी शिवाली आज तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त
1: बिल
0: दिवस है,
1: जी
0: तो इसके लिए तो हमें दूसरों को प्रेरित करना ही है, क्योंकि घर से या तो हम खुद जाएंगे या फिर हम किसी को भेजेंगे कि ये सामान ला दो या वो
1: जी
0: सामान ला दो, तो वो सामान जिसमें आएगा उसके लिए अगर हम उनको प्रेरित करें कि भाई हमने एक ये थैला रखा है, कपड़े का है या जूट का, जैसे कि आपने बोला कोई भी है
1: जी
0: ना, प्लास्टिक के सिवा, तो वो ले जाने की आदत डालें। तो देखिए शुरू शुरू में तो कई बार ना आनाकानी करते हैं बच्चे खास तौर पे कि भाई
1: जी
0: ये अच्छा नहीं लगता
1: लगता है
0: है या कुछ,
1: जी
0: पर अगर हम उन्हें समझाएंगे कि इसकी महत्ता क्या है और इसको उपयोग करके हम कितना पर्यावरण में अपना सहयोग दे रहे हैं बचाने में,
1: बिल्कुल
0: तो वो क्यों नहीं करेंगे, जरूर
1: जी
0: करेंगे।
1: जी बिल्कुल। प्लास्टिक मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि आपने बताया कि आज के दिन ये मनाया जाता है, 3 जुलाई
0: जी
1: को, है ना। तो देखिए, एक ये हम कह सकते हैं कि एक वैश्विक पहल है जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बहुत बड़े गंभीर जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए खतरा मान सकते हैं। तो इसके
0: बिल्कुल
1: बारे में लोगों को जागरूक करना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी कई लोग चोरी छिपे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या
0: जी
1: कर रहे
0: जी
1: हैं। तो देखिए, इसमें किसी की मतलब किसी को हम वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो अगर अपने आप के लिए एक समझ ले कि नहीं, ये चीज़ गलत है और उसका
0: जी
1: उपयोग नहीं करना है, तो क्यों ना भाई सभी फिर उस चीज़ की तरफ, है ना,
0: बिल्कुल।
1: अग्रसर होते हैं।
0: देखिए
1: तो
0: इसके नुकसान के बारे में अगर पता हो ना इंसान को कि भाई हम अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो वो पर्यावरण ही नहीं हमारे लिए भी कितना नुकसानदायक है,
1: बिल्कुल
0: तो लोग अपने आप जागरूक होंगे।
1: और देखिए भावना, वैसे भी हम सुनते हैं कि प्लास्टिक कितने कई साल लगा देता है गलने के लिए,
0: जी जी
1: तो आप मान लीजिए कि अगर आपके घर में इस तरह के चीज़ें आती हैं और आप इस उनमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: और थैलियों की बात ही नहीं है, जो जो हम सामान डिब्बे हम लेते हैं, जो भी प्लास्टिक है, कई बार बहुत सस्ती दामों पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं कि ये बहुत सस्ता है, अच्छा है, लेकिन है तो प्लास्टिक, है ना।
0: बिल्कुल। और खास तौर पे तो मैंने देखा है कि देखिए शिवाली वो जो बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की वो सिंगल यूज के लिए होती हैं
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: पर फिर भी हम जब उसमें पानी खत्म हो जाता है तो हम कभी उसमें दूध रख रहे हैं।

0: कभी फ्रिज में फिर पानी भर के रख रहे हैं या फिर कुछ और डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही तो नुकसानदेह है। और फिर पानी का यूज करके कहीं भी उनको फेंक देते हैं उन बॉटल्स को, है ना, तो ये भी कितना खतरनाक है।
1: बिल्कुल, तो देखिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं, सच में ही चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, और इसको बचाने में देखिए हम ही योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ही कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे, कहते हैं ना कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो वैसे ही चीज़ें सीखते हैं जो बड़े घर में करते हैं। तो देखिए उनको सिखाना और उनके लिए देखिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे, ये तो हम देख ही रहे हैं, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को सुधारें और पर्यावरण को ज़रूर बचाएँ।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो बातें मुझे लगता है भावना बहुत हो गई, क्यों ना, है ना, हमारी सखियां कहती होंगी ना कहीं बातों के चक्कर में कहीं गीत सुनाना ना भूल जाए।
0: बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है
1: जी।
0: बिल्कुल, मनोरंजन का ध्यान तो हम हमेशा से ही रखते हैं, आज भी रखेंगे। चलिए एक गीत सुनते हैं
1: जी।

0: चल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, तो इस गीत और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी सभी बहनों का कार्यक्रम वनिता मंडल में। और देखिए, पर्यावरण की तो बात हमने भावना कर ली, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं ना, वो ज़रूर इन सब चीज़ों पर जो है वो अमल करेंगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगी, और अपने पर्यावरण को बचाने में हमेशा अपना योगदान जो है वो देती रहेंगी, है ना? और देखिए, अब बात हम करेंगे कि आजकल का जो मौसम है ना, बरसात वाला, इसमें आपको वाटरप्रूफ स्टाइल जो है वो कैसे मतलब अपनाना है। इसका मतलब है कि आप किस तरह से बारिश में आनंद भी ले सकते हैं और बारिश में आपको भीगना भी पड़ेगा, है ना?
4: देखिए, तो आजकल बरसात के मौसम में शिवाली, आप कहीं भी जाओ ना, अगर छाता आप भूल गए हो
3: जी,
4: तो बारिश जरूर आती
3: है।
4: और अगर छाता साथ में हो तब बारिश नहीं आती।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो हमें भीगना ही पड़ेगा
3: जी, बिल्कुल।
4: और इस मौसम में अगर हमें भीगना पड़े, सबसे ज्यादा चिंता हमें अपनी नहीं होती, अपने फोन की होती है,
3: बिल्कुल,
4: अपने बैग की होती है कि भाई हाय ये खराब हो गए, हमारी फुटवेयर है उसकी होती है, भाई हम भीग जाएंगे, हमारी चप्पलें खराब हो जाएंगी, सैंडल्स खराब हो जाएंगे, मतलब इन सब की बड़ी चिंता
3: रहती है। बिल्कुल, है ना? तो बरसात के मौसम में बोलते हैं ना कि फैशन का मतलब केवल अच्छा दिखना नहीं होता है, बल्कि हमें ऐसी एक्सेसरीज चुनना है जो पानी और नमी को सह सके
4: जी,
3: है ना, और आसानी से साफ हो जाए और वो टिकाऊ भी रहे, क्योंकि मानसून की जो बारिश रहती है ये शहर को गुलजार तो कर देती है, लेकिन फैशन लवर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां जो है ना वो खड़ी कर देती है। जैसे आपने कहा कि छाता नहीं लेकर जाएंगे तो बारिश आ जाएगी, और लेकर गए तो होगी नहीं होगी, है ना, उसकी कोई वो उम्मीद नहीं है।
4: और कई बार तो शिवाली बारिश इतनी तेज होती है कि छाता भी कुछ नहीं कर पाता।
3: बिल्कुल जी, तो ऐसे ही देखिए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास हम कह सकते हैं कि जैसे आपने बैग की ही बात की कि हमारा जो बैग है अगर वो गीला हो गया तो कैसे, है ना? तो बरसात में जैसे आपका लैपटॉप है, आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और या बहुत ज़रूरी सामान है, तो उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप वाटर रेजिडेंट या वाटर प्रूफ बैग ले सकते हैं
4: जी,
3: जिसमें जो है वो पानी अंदर नहीं जाता है, और आपकी जो भी एक्सेसरीज हैं वो सारी सुरक्षित रहती हैं। इसमें एक ऐसी कोटिंग होती है, बहुत मजबूत मटेरियल, और वाटरप्रूफ जिपर का इस्तेमाल इसमें किया होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकती है। और बरसात में ऐसे स्टाइलिश बैग जो है वो स्लिंग बैग के रूप में आपको मिल जाते हैं, टोट बैग, या इस तरह से कई स्टाइल में आप इनको लेकर जो है वो आप अपना स्मार्ट आप खुद को दिखा सकती हैं, है ना?
4: बिल्कुल। और ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बैग में ही सभी हमारा सामान होता है, और वो सामान जैसे आजकल तो देखिए लैपटॉप लेकर चलते हैं हम, मोबाइल, तो ये बचाना तो बहुत ज़रूरी होता है
3: जी।
4: अब देखिए, मोबाइल की ही बात करें हम, तो वाटरप्रूफ मोबाइल पाउच हर स्मार्टफोन यूज़र की ज़रूरी एक्सेसरी है ना, वो तो होना ही चाहिए बरसात के मौसम में। बारिश है, यात्रा है, बीच, स्विमिंग पूल, या फिर किसी भी पानी वाले माहौल में, ये आपके फोन को पानी, नमी, धूल और छींटों से सुरक्षित रखता है
3: जी।
4: और खास बात ये है कि कई आधुनिक पाउच में फोन को बाहर निकाले

0: ये तो देखिए भावना, मुझे लगता है कि फैशन का भी एक ये हिस्सा बन चुका है।
1: जी
0: पहले तो देखिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत इसे इस्तेमाल के लिए की जाती थी, पर अब ये चीज़ें ट्रेंड में हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
1: जी
0: उनके छाते अगर हम मार्केट में देखें, रेनकोट देखें, तो बारिश ना भी हो तब भी दिल करता है कि हम ये उनके लिए
1: हाँ
0: ले ले।
1: ले ले
0: तो देखिए किस तरह से ये मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है ना ये
1: जी,
0: चीज़ें,
1: इतने
0: तो
1: सुंदर प्रिंट में जो वो
0: आते।
1: आते हैं
0: हाँ हाँ
1: रेनकोट, है ना,
0: बिल्कुल
1: और छाते देखिए अट्रैक्टिव
0: बहुत
1: बहुत लगते हैं, तो वही मन करता ही है कि हाँ ले लो।
0: बिल्कुल वही ना कि देखो ये ऐसे स्टाइलिश हुड वाला हो गया या लाइट वेट रेनकोट जो बैग में आसानी से आपके फिट हो सके, है
1: जी
0: ना।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: जो हमने बोला ना कि जो युवाओं को खूब पसंद आ रहा है, तो ऐसे वो डार्क कलर प्रिंट के रेनकोट छाते बारिश से बचाव के साथ पूरे लुक को खास बना देते हैं। और इस सीजन देखिए क्लियर डोम अम्ब्रेला लोगों को खूब भा रहा है। ये पारदर्शी छाता रहता है और बहुत ही क्लासी और ट्रेंडी में रहता है, जो आपके हर आउटफिट और स्टाइल के साथ अब मैच होता है। और वैसे देखिए हमारी बहनें तो वैसे भी देखिए फैशनेबल हैं, है ना। उन्हें तो वो कई बार देखिए भावना करती है कि जिस तरह का सूट हमने पहना है उसी तरह का छाता हमारे
1: छाता,
0: पास होना चाहिए।
1: हाँ मैचिंग
0: तो ये
1: छाता।
0: भी फैशन के साथ साथ एक दौर अब चल पड़ा है कि जिस तरह के कपड़े हों उस तरह की एसेसरीज भी आपके
1: जी
0: पास हो।
1: बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए बरसात में सबसे बड़ी चिंता जो दूसरी हमारी होती है वो हमारा फुटवेयर है ना, कि भाई हम बरसात में हमारी चप्पलें कहीं भी टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इसकी चिंता हमें बहुत रहती है। तो भाई हम तो यही सजेस्ट करेंगे अपनी सखियों को कि बरसात में चमड़े और कपड़े के जूतों की बजाय रबड़, पीवीसी या फिर ईवीए से बने सैंडल और फ्लोटर्स जो है वो बेहतर विकल्प होते हैं, क्योंकि ये जल्दी सूखते हैं और अच्छी पकड़ देते हैं। वही रंग बिरंगे स्लीक डिजाइन वाले लेदर शूज और रेन बूट्स इस सीजन का फैशन ट्रेंड बन चुके हैं। आप देखिए ना, हमें अपना ध्यान भी तो रखना है। कई बार
0: जी
1: हम ऐसे सैंडल्स या चप्पल पहन लेते हैं जो एकदम से फिसल जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बरसात का पानी होता है, गीली मिट्टी होती है, तो उसमें कई बार फिसल जाते हैं और फिसलने से चोट भी लग सकती है।
0: जी
1: तो इसलिए हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमारी चप्पलें, सैंडल्स, शूज जो भी हैं
0: जी
1: वो जो है वो उनका अच्छी पकड़ हो,
0: बिल्कुल
1: है ना
0: कि बरसात के मौसम में ये चीज़ें फिर आगे चलकर हमें दिक्कत देती है, तो इसलिए
1: जी।
0: ज़रूरी है कि आप जो भी फुटवेयर पहन रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे पकड़ वाले और मजबूत हों, है ना, फिसलने
1: बिल्कुल
0: वाले ना हों।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: देखिए ऐसे में भावना एक और कि वाटरप्रूफ घड़ियाँ जो बारिश के मौसम में घड़ी खराब होने की चिंता अब बीते दिनों की बात है ना कह
1: जी जी
0: सकते
1: जी
0: हैं हम,
1: जी
0: क्योंकि 50 मीटर तक वाटर रेजिडेंट घड़ियां बारिश नमी और हल्के पानी के संपर्क में भी अब सुरक्षित रहती हैं।
1: जी
0: तो हल्के और आरामदायक सिलिकॉन स्ट्रैप इन्हें रोजाना पहनने के लिए बेहतर बनाते हैं और जो कैजुअल और फॉर्मल दोनों लुक्स पर शानदार लगते हैं। तो
1: तो
0: देखिए
1: भाई हाँ शिवाली, आजकल देखिए अब फैशन भी कीजिए, स्टाइल भी अपनाइए और
0: बिल्कुल
1: बरसात का मौसम का
0: मौसम
1: मजा भी
0: जी।
1: लीजिए।
0: तो देखिए अब मजे की बात आई है, तो एक और गीत आप यहाँ पर अपनी सखियों के लिए।
1: जी

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, तो अब भावना, मुझे लगता है कि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त जो है ना
4: जी,
3: वो इस प्रोग्राम का यही खत्म हो रहा है। तो अब हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी अपनी सखियों से और कहनी पड़ेगी उन्हें
4: नमस्कार।
5: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:31 हुए हैं, लीजिए वो प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपनी रेडियो हम सफर शिवाली शर्मा, और रोज़ की तरह एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आपके साथ आपका प्रोग्राम लेकर। देखिए, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जी, शहीद फिल्म से अभी मैंने आपको गीत सुनवाया उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए।

जेवरा फिल्म से अभी हमने आपको गीत सुनवाया संतोष की आवाज़ में। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए।

जी, दबंग फिल्म से अभी मैंने आपको गीत सुनवाया राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। देखिए, सरहद की हर सांस में उनका ही नाम है, भारत की शान और तिरंगे का सम्मान है, जो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो जाते हैं, ऐसे वीर जवानों को हमारा शत शत प्रणाम है। कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

जी, सैनिक केवल सेवा के प्रहरी नहीं होते, बल्कि ये साहस, अनुशासन, त्याग और देशभक्ति की जीवंत मिसाल है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है।

कबीर सिंह फिल्म से भी मैंने आपको गीत सुनवाया अरमान मलिक की आवाज़ में। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म से, और इस गीत को गाया है मोहित चौहान और शिव घोषाल ने।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 1 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़ कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियाँ और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिर आए बदरा, सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है। मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया, लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहाँ पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया, मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से, मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले

हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं? और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं, तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमज़ोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएं खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था, सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना, और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे, किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बारिश के आगमन पर आधारित है। सचमुच

0: गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है। फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है। गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर

बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नज़ारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे हम, मौसम से बिंधे मन लिए घूमते हैं, आँखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौशमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है, मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नज़ारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है, लेकिन हाँ खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं मरीन ड्राइव पर जाते हैं तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी ज़मीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है, भीगी हवाएँ होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला है गीत बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। फिल्म है बहु बेगम,

बहू बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार ज़रूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊँचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज

तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी की ये नाता जन्म जन्म का बन गया। अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में। हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जाए घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम।

0: सफर का इंतजार है भाई, इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा, आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में, आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है, जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है, ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के

मस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे

सितना। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे, लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई ख़ास बात। संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है, संगीतकार मदन मोहन। और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई, अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए, और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन, और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और ज़रा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम?

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खां की बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimetres of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihanmumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
1: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and Harbour Railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western Railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen, and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
0: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं। सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक शाह।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर

मिलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार।

0: परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकार

0: इंग्टन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलम में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं, अब से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदा हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को ही अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ यात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अमरनाथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक एकता और सेवा के मूल्यों को मजबूत करती रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल व तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को जल्द ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य अवसंरचना को व्यापक रूप से सशक्त बना रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री

0: सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने पिछले 4 वर्षो में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। वहीं प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय भी बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी स्वीकृति दी। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग मिलने पर हाटी विकास मंच ने प्रसन्नता जताई है। मंच के सदस्यों ने कहा कि ये सिरमौर जिला विशेषकर गिरिपार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही उत्कृष्ट कला का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। उन्होंने सरकार से सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र की अन्य पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से जीआई पंजीकरण दिलाने का आग्रह किया है।
1: आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जिला सिरमौर का जो एक हमारा उत्पाद है लोहिया, जो हम लोगों ने पहना है, जीआई टैग उसको मिला हुआ है। जीआई टैग की जो सौगात है वो बहुत ही अमूल्य है। हमें हर्ष है कि जिला सिरमौर के एक जो वस्तु है उसको जीआई टैग मिला। काफी समय से लोगों की डिमांड थी कि ये जो लोहिया है सांस्कृतिक धरोहर है, इसका जीआई टैग होना अति आवश्यक है। समय समय पर प्रदेश हाटी विकास मंच और अन्य संगठनों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाया था। परिणाम स्वरूप हमें इसकी अमूल्य सौगात मिली है। अब क्या होगा, जैसे ही लोहिया का जो स्थानीय उत्पाद है वो अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन, मान्यता मिलेगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन, महिलाओं की सहायता के लिए समर्पित एक मंच। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
3: महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना एक समावेशी और न्याय संगत समाज के लिए आवश्यक है। सुलभ और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा तंत्र मुद्दों का निवारण करने और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा व बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। ये महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनके कल्याण व सशक्तिकरण की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल में दहेज, समान रोजगार के अवसर और श्रम शोषण आदि विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से संबंधित हजारों शिकायतें मिलती हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार महिलाओं के मानसिक कल्याण पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसके लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है। संकट में महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित करता है, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करता है। ये टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन 7827170170 से जुड़े एक आसानी से याद रखने वाले शॉर्ट कोड के रूप में कार्य करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला या लड़की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है। ये महिलाओं की शिकायत दर्ज करने और तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श संस्थानों द्वारा संचालित है। ये जरूरतमंद लोगों के लिए पेशेवर और सुगम हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला हेल्पलाइन सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और शिकायत निवारण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों का उदाहरण है। हेल्पलाइन किसी भी समय सहायता प्राप्त करने के लिए 2400 घंटे डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करती है। हेल्पलाइन शिकायत पंजीकरण मनोवैज्ञानिक परामर्श, रेफरल सहायता और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए एक डिजिटल एक्सेस पॉइंट की सुविधा प्रदान करती है। ये सहायता सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक केंद्र बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी नंबर प्रदान करके ये पहल विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति में सहायता तक त्वरित पहुंच को सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रकृति और प्रवृत्तियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये विश्लेषण महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों के कामकाज में अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। इसके निष्कर्ष ऐसे मामलों की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशों का समर्थन करते हैं। पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, फॉरेंसिक वैज्ञानिकों, बचाव वकीलों और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों के दौरान शिकायतों का उपयोग केस स्टडी के रूप में भी किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले आयोग के अधिकार क्षेत्र के अनुसार शिकायतों की समीक्षा की जाती है। शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है ताकि ये तय किया जा सके कि वे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं या नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर किया जाता है और उन्हें एक यूनिक केस नंबर दिया जाता है। जो शिकायतें अधिकार क्षेत्र में नहीं आती उन्हें शिकायतकर्ता को सूचित करने के बाद बंद कर दिया जाता है। मामले की प्रकृति के आधार पर पंजीकृत शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। पुलिस जांच में तेजी लाना, निगरानी करना, वैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना, मध्यस्थता परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान करना है।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
2: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। आप इसको किस तरह से लेती हैं?
2: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए,
2: सोचती हूँ ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है, फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
2: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
2: है ना?
1: जी
2: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास, कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से। आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात है
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन
0: जी,
1: नेम है लहरी,
0: पेन नेम है
1: जो
0: आपका लहरे।
1: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ कि सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी,
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना, जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना, वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपकी हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की नहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ,
0: बिल्कुल
1: और उसके
0: सुनाइए।
1: बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: जी
0: बहुत ही प्यारा।
1: शुक्रिया।
0: हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, इसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता
1: मैं
0: जी, क्या करती हैं आप?
1: मैम खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई के ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजार रही
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम।
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को,
1: नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: हमारी?
1: जी, मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी
0: सुशीला माहेश्वरी भोपाल से। जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से
1: जी,
0: ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो
1: जी,
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: वाला
0: ही
1: गाना सुनना है मुझे।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, पियर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में।
0: जी तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे,
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ,
0: वैष्णवी आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: 7।
0: 7th की।
1: हाँ,
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। खो
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में HOD के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं।
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना
1: हाँ
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। कि मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए,
0: जी, ये तो
1: और
0: कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना
0: जी
1: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप
1: और
0: टीचर।
1: उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी कि उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने
0: जी
1: आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई
0: जी
1: में। हाँ,
0: जी
1: नहीं ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं,
0: जी
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख
1: हाँ,
0: और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं,
0: जी
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं,
0: जी
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
0: जी
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी
1: हाँ
0: के पल आ जाएं, तो अपने आप को
1: हाँ
0: एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप
1: हाँ
0: बताना चाह रही
1: तो
0: हैं ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन
0: जी
1: हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा,
0: जी यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा, और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
0: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सबा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं, ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर से।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा
1: कुछ
0: है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही
0: जी
1: रहते हैं, कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई
1: हाँ
0: सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज़ आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैम, मैं जो विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी,
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: चलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुँचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाज़ें, पर ये लोग उन आवाज़ों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियाँ होंगी और 100 के करीब लोग, किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में ज़रूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीज़ें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिला कर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अधखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहां वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी, किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियाँ जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता, इंसान

कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नए कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, हम्म। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम

0: को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना। उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें, ये मौसम।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही, इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी?
क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहाँ नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहाँ और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफ़ेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर ज़रूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए।
2: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित

0: लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर।
2: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
3: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 MW क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
3: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
3: फायदा ही फायदा, परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
3: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5:07 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के बाद आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम यू मंच शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 7 बजे समय रहेगा हिंदी समाचार का, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी भजन। शाम 7:25 पर समय रहेगा कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि के 8 बजे से रात्रि के 8:45 तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर समय रहेगा समाचार संध्या का और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत और रात्रि 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम चांदनी रातें का। और देर रात तक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं भजन संध्या कार्यक्रम। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले तमाम प्यारे श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं भजन संध्या कार्यक्रम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पवन बख्शी के गाए इस भजन के साथ।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम भजन संध्या।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: तो लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। स्वर है करनैल राणा का।

0: अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
8: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
7: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। तो लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम यू मंच।

यो मंच कार्यक्रम सुनने वाले तमाम प्यारे युवा साथियों को आपके रेडियो दोस्त प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। तो युवा साथियों, कहिए कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो लीजिए, हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यू मंच लेकर। तो युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नज़र आसमान पर होती है। तो चलिए, कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं DRDO के रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। इस फेलोशिप के माध्यम से इंजीनियरिंग के बाद रिसर्च में कैरियर बनाने और पार्ट टाइम PhD करने का अवसर भी आपको मिलता है। युवा साथियों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRDE DRDO ने वर्ष 2026 के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुसंधान यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और देश की रक्षा तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। CVRDE में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उन्नत युद्धक वाहनों, ऑटोमोटिव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार तकनीक और कंप्यूटर आधारित रक्षा प्रणालियों से जुड़ी अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। यह फेलोशिप न केवल शोध के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगी बल्कि युवाओं को वैज्ञानिक करियर की मजबूत नींव रखने और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी उत्कृष्ट अवसर देगी। युवा साथियों, इस भर्ती के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आदि पद निर्धारित किए गए हैं।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ बीई या बीटेक डिग्री एवं वैध गेट स्कोर होना आवश्यक है। वैकल्पिक रूप से उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्तरों पर प्रथम श्रेणी के साथ एमई या एमटेक डिग्री भी मान्य होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 28, 31 और 33 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 37,000 रुपये की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें HRA और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस फेलोशिप की प्रारंभिक अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। विशेष रूप से चयनित अभ्यर्थियों को फेलोशिप के दौरान पार्ट टाइम PhD करने का भी अवसर प्रदान होगा। अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है आधिकारिक लिंक tinyurl.com/mrm8eswa पर विजिट कर सकते हैं। तो युवा साथियों, ये तो थी जानकारी DRDO के रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसमें उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वच्छ स्थापिता प्रतिलिपियां संलग्न करनी है, और इसके साथ ही जो है इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, गेट स्कोर कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है, तथा अन्य संबंधित दस्तावेज भी शामिल करने हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन या ईमेल दोनों माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो युवा साथियों, जानकारी का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। चलिए अब आपका मनोरंजन हो जाए और आपके मनोरंजन के लिए सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है और आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम युवमंच। तो युवा साथियों, अगली जानकारी उन युवा साथियों के लिए है जो बीटेक, बी फार्मेसी और एमबीए के लिए आजकल आवेदन कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि तकनीकी विवि विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की तिथि जो है वो 7 जुलाई तक बढ़ गई है। युवा साथियों, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक स्तर सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल होने की आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी तकनीकी विवि परिसर व संबंधित सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी आर्किटेक्चर सहित अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई तक कर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा है कि पात्र अभ्यर्थी 7 जुलाई तक काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय और संबंधित शिक्षण संस्थानों में बीटेक डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बीएससी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, एमए और एमएससी योग और फार्मा डी के लिए पात्र अभ्यर्थी 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बी आर्किटेक्चर और बीटेक व बी फार्मेसी लेटरल एंट्री, एमटेक व एम फार्मेसी के लिए 25 जुलाई तक आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। अभी तक यूजी और पीजी विषयों की काउंसलिंग के लिए 6,550 अभ्यर्थियों के आवेदन आ चुके हैं। युवा साथियों, आगे आपको जानकारी दें कि भई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमएड के पुराने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए एमएड की डिग्री पूरी करने और अंकों में सुधार का विशेष अवसर दिया है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के निर्णय के तहत शैक्षणिक स्तर 2005-06 से आगे के सभी पात्र अभी विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रण कार्यालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी कारणवश एमएड की डिग्री पूरी नहीं की या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे विशेष अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए प्रति सेमेस्टर ₹15,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई तय की गई है। परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर श्याम लाल कौशल ने इसकी पुष्टि की है।

0: अगर अगली जानकारी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 3 से 10 जुलाई तक होगी पीएचडी और पीजी के लिए काउंसलिंग। युवा साथियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के विभिन्न स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों की प्रवेश काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 से 10 जुलाई तक अलग अलग विभागों में काउंसलिंग होगी। प्रवेश परीक्षा निर्धारित कट ऑफ और विश्वविद्यालय के नियमों के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। 3 जुलाई यानी कि आज को विजुअल आर्ट्स विभाग में नियमित और पार्ट टाइम पीएचडी की काउंसलिंग हो रही है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शोध प्रस्ताव, श्रेणी प्रमाण पत्र और पार्ट टाइम अभ्यर्थियों को एनओसी लाभ साथ लाना होगा। 6 जुलाई को पर्यावरण विज्ञान विभाग में एमएससी साइंस की काउंसलिंग रखी गई है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 40 अंक, एससी और एसटी वर्ग के लिए 35 अंक कट ऑफ तय है। इसी दिन एमए डिफेंस की काउंसलिंग भी होगी। 7 जुलाई को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की काउंसलिंग होगी। यह प्रवेश विश्वविद्यालय परिसर, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली और शलूनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट सोलन के लिए होगी। तो चलिए युवा साथियों, अब कार्यक्रम में फिर से आपको एक गीत सुनाते हैं। तो उससे पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक।
1: एक ही नाम गूंजता है, हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
5: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
4: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

तो युवा साथियों, अब समय हो रहा है आपसे अलविदा कहने का, इसी आशा के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अपने रेडियो दोस्त प्रवीण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यो मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
5: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
4: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल व तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को जल्द ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य अवसंरचना को व्यापक रूप से सशक्त बना रही है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपेक्षित व निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अति दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियो में जनसमस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बाद में जगत सिंह नेगी ने कल्पा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की समावेशी नीतियों व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए मजबूती से पैरवी करती है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आईजीएमसी शिमला में अब रोगियों का उपचार करने के साथ साथ बीमारी के कारणों व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। आईजीएमसी की रिसर्च टीम द्वारा लाहौल स्पीति के काजा में पित्त की पथरी के मामले में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये पथरी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए अढ़ाई वर्ष तक काजा में 450 लोगों पर ये अध्ययन किया गया।
1: इस पीति एरिया को हमने तीन हिस्सों में बांटा। 3500 मीटर से नीचे वाला अल्टीट्यूड ताबो वाला एरिया, मिड अल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेकर 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका हिक्कीमेंट कॉमिक वाला एरिया थी। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया, हर पेशेंट भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 अगर लिए हैं तो 450 में 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किया, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाएगी।
0: वहीं अध्ययन की जानकारी देते हुए आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब बीमारियों और उनके कारणों को लेकर शोध किया जा रहा है।
2: हमने एक जनसंख्या आधारित गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया।
0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 49 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित जहालमा नाला में राहत व पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। सिरमौर जिला के संगड़ाह क्षेत्र के निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने राजगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक जरूरतमंद युवती के इलाज के लिए चैरिटी रन के माध्यम से धन इकट्ठा कर मदद करने का संकल्प लिया है। युवती को गलती से सोलर लाइट की बैटरी का पानी पीने से गले में इन्फेक्शन हो गया है और इलाज पर 15 से 20 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कल 4 जुलाई को सोलन में चैरिटी रन का शुभारंभ किया जाएगा और 5 जुलाई को सोलन से राजगढ़ तक चैरिटी रन आयोजित की जाएगी।
3: मेन उद्देश्य रहने वाला मिशन ज्योति बहन को बचाना। आप श्रद्धा पूर्वक आप दान करें ताकि हम अपनी बहन ज्योति तोमर का इलाज करा सके। इसलिए दौड़ नहीं है बल्कि एक इंसानियत की दौड़ है। अगर समाज में कभी भी ऐसी मुसीबत आ जाती है आस पड़ोस में रिश्तेदार में, तो अगर समाज एकजुट होकर आगे आता है तो मुझे नहीं लगता कि कई बहनें ऐसी हैं, कई हमारे भाई है जिनको हम ऐसे कंडीशन में बचा सकते हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी हमीरपुर के इस सुरीले और दिल को सुकून देने वाले कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने में आपका हार्दिक स्वागत कर और मैं आपका रेडियो दोस्त प्रवीण। श्रोताओं, इन दिनों गर्मी के बाद अब जब आसमान में बादल घिरते हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, तो मानो प्रकृति एक नया संदेश लेकर आती है। पेड़ पौधे खिल उठते हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को महका देती है और वातावरण में एक नई ऊर्जा भर जाती है। आज की इस खुशनुमा शाम में हम सुनेंगे नए और पुराने दौर के कुछ सदाबहार गीत और साथ साथ करेंगे जीवन की छोटी छोटी बातों पर चर्चा जो हमें आगे बढ़ने और मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देती है। तो आइए शुरू करते हैं यह संगीतमय सफर।

0: श्रोताओं, अभी आपने जो गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म लोफर से, और स्वर था मोहम्मद रफी का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: दोस्तों, मौसम बदलता है, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है। यदि वर्तमान समय आपके अनुकूल नहीं है तो निराश ना हो। जिस प्रकार तपती गर्मी के बाद बारिश आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। तो आइए अब सुनते हैं एक और शानदार प्यारा सा गीत। श्रोताओं, जो गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म दिल तो पागल है से, और स्वर है उदित नारायण और लता मंगेशकर का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें चट्टानों को भी धीरे धीरे काट लेती है, यही निरंतरता की शक्ति है। यदि आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार छोटे कदम भी बढ़ा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं।

श्रोताओं, बारिश और इस गीत का रिश्ता तो मानो बरसों पुराना हो। बारिश केवल मौसम नहीं बदलती, यह हमारे मन की थकान को भी धो देती है। जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ गर्मी की तपिश जैसी लगती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई समय के बाद राहत की बारिश ज़रूर प्रदान करती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सफलता का असली आनंद प्राप्त करता है। तो चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का, और फिल्म है प्रेम कहानी।

0: किसान भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई गई। कने आज दे इस कार्यक्रम विच किसान भाइयों सोगी ढेर सारिया गल्लां बातां जानकारियां सांझा करने दे ताए आशा कने मंगला भी बिल्कुल ठीक टाइम दी हाजिर होई गई आ।
1: तां वी सारे ते पहलां तां आहां अपने इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी दे विच अपने सारे श्रोताओं दा करदे ढेर सारा स्वागत
0: जी। कने उम्मीद ही कि आहां दे किसान भाई जे असे अपनी सेहती दा पूरा पूरा ध्यान जे असे रखा दे होणे, क्योंकि बरसातां जे इसे उतरी गई आ। कने बरसात के जे दिन होंगे ना, इन्हां दिनां च बीमारियां लगने दा भी बड़ा डर जे असे बनी रहंदा भी है या।
1: बिल्कुल, क्योंकि मौसम जे असे उपर नीचे चलदा रहंदा भी है। घड़ी च बरखा होदी तो भाई ठंड जैसे पई आदि, कने तिसते बाद धुप्पे भी जैसे गर्मी होई आदि भी, तो तिसते क्या होंदा भी सर्द गर्म होने का खतरा जैसे रहंदा भी है। तद या अगर जे मौसम दा आरा न्यारा ले लैन, मौसम दा रुख मिजाज जानी ने, जैसे अहां अपने जेड़े घर दे कने खेती बाड़ी दे कम कार करना, तो अहां इन्हां चीजां ते जे असे बची सकदे भी है।
0: कने खेतरा दे काम तो दे ही होंदे ना मंगला, कदी खत्म नहीं होंदे आए। कोई ना कोई काम जे असे खेतरा च लगी रही रहंदा भी है। निदाइयां करीने कन्ने आहां दे किसान भाई जे असे अटे तो दूजे पासे जे है धाना दा काम शुरू होई जांदा भी है। टाइमा टाइमा च जे इसे जांच परख खेतरा च करदे रहंदे भी है। कने जियां जियां जे फसला दी बढ़वार हुंदी रहंदी, तां तियां ही कई बीमारियां समारियां लगने दा भी डर बनी रहंदा। तो कोई ना कोई काम कार जे असे आहां दे किसान भाइयां दा खेती बाड़ी ते जुड़ी रहा चली रहा रहंदा भी है।
1: बिल्कुल वे किसान दे काम कार जे सैनी मुकदे भी है, पर वे एक काम कार तो इं चली दे रहने सार ते जरूरी आहां दी सेहत, क्योंकि सेहत ठीक रहेंगी ना तो कम कार जैसे अपने आप हुंदे रहने भी। कने सेहत जैसे मौसम पर जैसे निर्भर करदी भी। कने जे अज के दिन दे मौसम दी गलबात करिए ना, तो अज के दिन दा तापमान ज्यादा ते ज्यादा रिया दिन 31 डिग्री सेल्सियस ना, कने संझा प्यागा घट ते घट
0: 24 डिग्री सेल्सियस। कने मौसम विभाग दी यही जानकारी आहां जो कि आने आले 2-3 दिन जे ऐसे मौसम ते आई बनी रहना, ढक गुआड़ जैसे चली रही रहनी, घड़ियां बरखा लग रही रहनी, घड़ियां बदल आई आने, घड़ियां जे ऐसे मौसम थोड़ा हल्का साफ भी हो सकता, तो किसान भाई यही गलाना चाहते भी जा लीजिए बरखा लगी रही हो तो ताली अपने घर आरे काम करी ले, कने जा लीजिए मौसम साफ हो तो ताली जे ऐसे खेतरा दे पास से भी यहाँ जरूर नजर जे ऐसे मारनी, क्योंकि ना दिन च दे आउंदा ना भी जगह जगह पानी रे डक लगी आंदे, चले जड़े छलियां रे खेतरा चाहे कड्डी रे से जगह जगह ते जे है टूटी आंदे भी है, तो जा लीजिए बरखा चुकदी तो खेतरा दा हारा न्यारा लेना भी बड़ा जरूरी हो जाता भी है।
1: बिल्कुल भाई, आरा न्यारा हर चीजा लेना चाहिए, चाहे खेती बाड़ी हो चाहे माल पशु हो। कर्मी माला पशु ते चेता आया कि आज हाँ अपने सुनने वाले जे ऐसे माला पशु ते जुड़ी दी एक योजना दे बारे भी जैसे गलबात करनी भी
0: जी। सही, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
1: बिल्कुल,
0: यह योजना दे जरिए पशु पालकां जो गाय भैंस भेड़ बकरी जेड़े पशु हुए तिना दे भरण पोषण दे ताए इक ने डेयरी व्यवसाय दे वास्ते जे ऐसे सस्ती दरां च लोन जे ऐसे प्रावधान करवाया जांदा भी है
1: जी। कर इस दे जरिए किसानां जो जे ऐसे 1.60 लाख तक दा लोन जे ऐसे बिना किसी गारंटी दे जे ऐसे मिली आंदा भी
0: जी।
1: कंत इस पर जेड़ दी प्रभावी ब्याज दर हुंदी से हुंदी 4%। कने यह योजना चलाने दा सरकार दा ए उद्देश्य आ कि जेड़ जहां दे किसान कने बागवान भाई भैण ना से माला पशु दा कम कार जैसे भी बिल्कुल अच्छे तरीके ने जैसे करी सकन। कने अगर जे कुसी बल जियां माला पशु लैने ताए जियां पर्याप्त धन राशि नहीं हुंदी ना, तां तिना दी इह समस्या दे समाधान ताए जे ऐसे ए योजना जैसे चलाई दी भी
0: जी। इह योजना दे जरिए जे ऐसे ऋण दी सुविधा दे पशु पालक भाई भैणों दित्ती जांदी भी है। पशुओं संख्या के आधार पर प्रति गाय लगभग 40,000 कने प्रति भैंस लगभग 60,000 तक दी कार्यशील पूंजी जे इसे पशु पालक भाई बहनों दीती जांदी भी है।
1: बिल्कुल, कने लोन दी गल थी दस्या भी था वे 1.60 लाख तक दा लोन जे ऐसे मिलदा भी आ कने बिना गारंटी पर। कने अगर जे जरूरत पो ना ते इयो बधाए ने 3 लाख तक भी आहे करी सकदे भी है
0: जी। कने सामान्य ब्याज दर 7% तक प्रति वर्ष रहंदी भी है। समय पर भुगतान करने वाले किसानां जो सरकार दी तरफा ते 3% अतिरिक्त छूट जे इसे इस मिली आंदी भी है, जिस ते प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% जे इसे रही आंदी भी है।
1: बिल्कुल, कने ए जेड़ा लोन है ले दंदा ना बे इह राशि दा उपयोग पशुआं ताए जैसे दियां है चारा ले सकदे भी है, दवा ले सकदे भी है, टीकाकरण कराई सकदे, कंतीना ताए जियां जे शेड दा निर्माण करवाई सकदे भी है, इना खर्चें ताए जे ऐसे करी सकदे भी है
0: जी। ता अगर आहां दे पशु पालक भाई बहन जे ऐसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना दा फायदा लेना भी है, ता इस दे ताए किस तरह दी पात्रता जे इसे रखी गई री भी है, इस दे बारे च हुण गल करिए। ता आवेदक जेड़ा किसान है या पशु पालक है, सै गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं फिल्मी भजन। तो लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लेकिन फिल्म के इस भजन के साथ, जिसे अपनी मधुर स्वर में ढाला है लता मंगेशकर ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मोहम्मद अजीज और साथियों को, फिल्म है फलक।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फाल्गुनी पाठक और देव चौधरी को। फिल्म है लीला।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।
6: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
7: TLI है ना?
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
5: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 7:25 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम रौनकां ग्राईंदियां।

0: कार्यक्रम रौनकां गराइंदियां सुनने वाले आहदे सारे श्रोताओं जो मेरा यानी कि मंगला दाकन मेरे ने सौगी
1: आशा दा प्यार भरा नमस्कार। दिखा भी कार्यक्रम दा नाम है रौनकां गराइंदियां। इस कार्यक्रम विच आहां दी गलबात वेड़ी जी रहिंदी मंगला क्या है अपने गांवां दी रौनकां कियां बनाई ने रखी सकदे
0: जी।
1: पर गांवां दी रौनकां बई तां ही बणी ने रहणी अगर गांवां च रहने वाला हरेक परिवार हर परिवार दा हरेक सदस्य जे है तंदुरुस्त कने खुशहाल हुंगा ता
0: बिल्कुल। कने इस कार्यक्रम दे माध्यम ते आहंदी भी कुछ एड़ी जी गलबात रहिंदी कि केड़ी केड़ी दीआं आहां नवीआं गल्लां बातां दसगे, केड़ी केड़ी नवीआं स्कीमां दसगे तिन्हां जो अपनाई ने जैसे आहंदे गांवां दा विकास
1: जिहड़े कीट पतंगे हुंदे भी है ना जियां जे संज के टाइम घर च लाइट आहे जलांदे ता एकदम से लाइट दे अखे बखे जे ऐसे कठे हो जांदे भी है कने तिन्हां दी वजह ते फिर काफी ज्यादा परेशानी जे इसे जो झेलना पौंदी भी है ना।
0: ओमी जियां बरखा हुंदी ना तां बत्तर जे इयां आंदी उड़ी ने भी
1: जी।
0: कने लाइटां वल तां इयां ढेर लगी आंदा भी आ तवे आ जो कोशिश करना चाहिए कि ये जड़े कीट पतंगे इतनी देगी दूर रखने
1: तो इस दे ताए कुछ एक चतनगियां हां जो जरूर जे इसे बरतनी चाहिए जी। आ शामी दे टाइम जी ऐसे हां खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखने भी है
0: जी।
1: शामी लाइट जलाने ते पहले हां क्या करना कि पहले अपने खिड़की दरवाजे जी ऐसे दिखी लेने अगर कोई खिड़की दरवाजा खुला ता से पहले हां बंद करी लेना भी है क्योंकि जियां जाहे लाइट ऑन कर दे भी है ना एकदम से लाइट दे अखे बखे जी ऐसे कीट पतंगे मंडराना शुरू करिए भी आए तो भाई लाइट जलाने ते पहले खिड़की दरवाजे हाँ जरूर बंद करिए ने भी आए तिस्ते जे एक कीट पतंगे घर अंदर नहीं आई सको।
0: बिल्कुल। कने इसते उपरांत जियां जे घर विच अहां जो होम मेड कैंडल जिसे जलाना चाहिंदी भी तो संझ के टाइम क्या करना भी खिड़की दरवाजे जो बंद करने ते बाद लाइट जलाने ते पहले घर च कुछ देर ताए जैसे अहां जो कैंडल ते मोमबत्ती जिसे जलाना चाहिंदी
1: जी।
0: कने अगर जे तुहे चाहन ता होम मेड कैंडल जैसे बनाई ने भी इस इस्तेमाल कर सकदे। कने इस जो बनांदे टाइम पेपर मिंट या फिर लेवेंडर ऑयल जो मोम विच जरूर ऐड करना चाहिंदा
1: जी। कने अगर अहां जो लगो कि जी तुहे बोले ने एकदम से बतरा कई बार आई आंदी भी है कने लाइट जलाई रही होगी तो फिर बल्बा दे अखे बखे या फिर कोई भी लाइट जल रही तिस दे अखे बखे जी ऐसे ढेर सारी बतरा जे इसे आई आंदी भी है
0: कने तिंगे अगले दिन पे आगा काम जे ऐसे बधी आंदा
1: जी। तो जाली जे हां जो लगो कि ये बतरा जे इसे लाइट दे अखे बखे आना लग रही भी है तो कुछ देर जे इसे हां लाइट बंद करिए नी भी है या फिर घर रे अंदर दी लाइट बंद करिए नी कने बाहरली लाइट जे इसे जलाई देनी भी है
0: बिल्कुल ताकि अंदरली बत्तर जे से बाहर जो जाई सके भी।
1: हां फिर थोड़ी देर बाद आहे दिख दे कि जेड़ी भी बतरा ही या कीट पतंगे से बाहरली लाइट वाल जे ऐसे आकर्षित हो गए उसके बाद आहा खिड़की दरवाजे बंद करने उसके बाद अंदरली लाइट जे ऐसे आहे जलाई सकदे भी है।
0: बिल्कुल। कने फिर तीस से बाद आहा दिखना दी राती सोना लगना ना ताहा जो एक कोशिश करना चाहिंदी कि छोड़ जे ये बाहरली लाइट भी बंद कीती जाए ताकि बाहर भी ज्यादा बत्तर जे से इकट्ठी नहीं होए
1: जी। इस होगी जे ऐसे गेंदे दे फुल्ला दा है गुलदस्ता बनाई ने कन्ने घर अंदर रखी सकदे या तुलसी दी पत्तियां भी जगह जगह जे ऐसे घर रे अंदर रख गे ना तो कीट पतंगे जे ऐसे कम आंदे भी है।
0: अच्छा। कने इस ते पर जिंगे जे आ जो घर विच एयर फ्रेशनर जे ऐसे बनाना चाहिंदा भी आ कीट पतंगे ते छुटकारा पाने ताए आहां घर पर होम मेड एयर फ्रेशनर जैसे तैयार कर सकते। कने इस जो बनाने ताए क्या करना भी एक बाउल लेना है फिर जी एक कटोरी लैनी कने तिस विच थोड़ा जहा बेकिंग सोडा लेना कने फिर तिस विच यूके लिप्टस सिट्रोनेला एसेंशियल ऑयल कने लेमन जूस दी 10-10 बूंदा जैसे आपू जी मिक्स कर देनी है भी
1: जी।
0: तिस दे बाद एक घोल जे तैयार हो जाना ना तो एक स्प्रे बॉटल विच आहां भरना ना कने टाइमा टाइमा पर घर विच ना इस दा स्प्रे जैसे करते रहना चाहिंदा इससे क्या होना बेई जड़े कीट पतंगे होंगे से इससे दूर जाते भी है कने खास कर लाइट दे अखे बखे तो यह स्प्रे जो है जरूर करना भी है
1: जी। इस होगी जे अस बल्ब हो गए ट्यूब लाइट हो गए खिड़की दरवाजे हो गए भी है तिना दी साफ सफाई का भी अहाँ जो ध्यान जे ऐसे रखना चाहिए इस वास्ते अह क्या करी सकते भी दो मग पानी च एक कप सिरका कने एक नींबू का रस जे ऐसे अहाँ मिक्स करना भी है इस दे बाद इस मिश्रण जो कपड़े च डबोई ने कने जे ऐसे कपड़ा अच्छे तरीके ने कन्ने निचोड़ी लेना उसके बाद खिड़की दरवाजे बल्ब ट्यूब लाइट्स जो भी अहां दी लाइट आई ना तिना च जे असे अहां अच्छे तरीके ने कन्ने कपड़ा

0: दिखासा इसने सौगी हां जो ना कुछ गल्लां दा और भी ध्यान रखना चाहिदा जियां जियां अहें बाहर ते अंदरों जांदे भी ते अजकल तुहानू जो पता बरसात दा मौसम आ तियां बे सिज्जी भिज्जने दा जांदे हैं
1: जी
0: ते गिल्ले पैरे अंदर चली जान तवी तियां संक्रमण हुंदा भी है कने तियां गिल्लियां चीजां तियां संक्रमण जे असें फैलदा भी है परजीवी पनपी आंदे भी ते इस तरह अहें जो करना चाहिदा जियां बे दरवाजे पर डोर मैट जे रखे ना इस पर पैरां झाड़ी ने जा या साफ करी ने जा या फिर जुत्तियां बाहर खोली ने जा भी यानी कि कोशिश करना चाहिए कि अहां सुक्के जैसे अंदरों जाने यानी कि घर जैसे सुक्का रहे
1: जी
0: ताकि बीमारी समारी लगने दा जैसे कोई भी खतरा नहीं रहे कने ताली जी इड़ जी सलाब घर अंदर आंदी ना ताई एक कीट पतंगे जैसे पनपदे भी कने अंदरों जो आंदे भी
1: बिल्कुल ठीक गलाया। इस ते अलावा घरे जे ऐसे जेड़ा गिल्ला कचरा हुंदा भी है ना सब्जियां दे छिलके हुंदे फलां दे छिलके हुंदे भी है ते असे ज्यादा टाइम आहां जो घर दे अंदर नहीं रखने चाहिए तिना च भी एकदम से आजकल कीड़े पनपी आंदे भी है या फिर मक्खियां जैसे तैयार हो जाते
0: भी
1: है
0: लगदे छोटे छोटे।
1: हाँ तो डस्टबिन जे ऐसे हमेशा हाँ जो ढक्की ने कने रखना चाहिए कने हर रोज जे ऐसे आजकल हाँ जो डस्टबिन खाली करना चाहिए कने साफ करना चाहिए भी है या तिसते भी काफी हद तक जे ऐसे ये जेडे कीट पतंगे होंगे तिना ते घर अंदर जे ऐसे बचाव हो जाता भी है या जिस टाइम जे हाँ जो लगो कि कीट पतंगे जे ऐसे घर अंदर ज्यादा दूसरना शुरू हो गए भी है तो कपूर कने लौंग जे ऐसे हाँ जो जलाने चाहिए भी है क्योंकि इन्हें तेज खुशबू होंगी भी है ना
0: जी
1: तिसते एकदम से कीट पतंगे जे ऐसे दूर नठी आंदे भी है।
0: इस उपरांत जियां जी गिले पैर होंगे तो गिले पैरों से हाँ जो तीन बिस्तरे पर जैसे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि अजकल वातावरण जी नमी इंगी मतलब हर चीज़ बिच नमी जैसे अपने आप ही आई जाती भी हालांकि अहां जो कोशिश करना चाहिए कि जियां जो धुप्पा हो ना तो अहां जो ये चीज़ा क्ढी ने बाहर धुप्पे सुखाना चाहिए भी
1: जी जी
0: धुप्प लुआई लेना चाहिए।
1: इस ते अलावा जे है जियां नीमा दे अगर पत्ते हो ना तां संझ के टाइम आ जे ऐसे नीमा दे पत्ते है घर ते बाहर जलाई देंगे ता भी कीट पतंगे या मक्खी मच्छर ते जे ऐसे काफी ज्यादा हां जो राहत मिलदी है ते छोटे छोटे आहां दे नुस्खे हुंदे भी है इना जो अपनाई ने कन्ने जे ऐसे है अपने घरा दे अखे बखे दा वातावरण जे ऐसे साफ सुथरा रखी सकदे भी है कने कीट पतंगे दी समस्या ते भी जे ऐसे छुटकारा पाई सकदे भी है।
0: बिल्कुल भई आशा ता दिख भई जानकारियां ने तो रौनक लगाई दी ना कन ऊन बारी लोक गीता दी
1: जी ता देर नहीं करनी कने सारे मिली ने सुनी लेने कार्यक्रम बीचे प्यारा जिया लोक गीत।
0: लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनकां ग्राएं दियां। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्य सरकार ने प्रदेश वन विकास निगम के कर्मचारियों को पहली अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बना हरोली। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव के पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी, तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, मौसम विभाग की आगामी एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को पहली अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा पहली अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। वहीं प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार मात्र पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय भी बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी स्वीकृति दी। ये संशोधन पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्यपाल ने ये बात आज लोकभवन में उनसे मिलने आए गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान राज्यपाल ने एसोसिएशन के चलो हिमाचल अभियान का पोस्टर भी जारी किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख जलाशयों व झीलों में साहसिक पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। कविंद्र गुप्ता ने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। आईजीएमसी शिमला में अब रोगियों का उपचार करने के साथ साथ बीमारी के कारणों व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। आईजीएमसी की रिसर्च टीम द्वारा लाहौल स्पीति के काजा में पित्त की पथरी के मामले में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये पथरी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए 2.5 वर्ष तक काजा में 450 लोगों पर ये अध्ययन किया गया।
1: इस पीति एरिया को हमने 3 हिस्सों में बांट, 3500 मीटर से नीचे वाला अल्टीट्यूड ताबो वाला एरिया, मिड अल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेकर 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका हिक्कीमेंट कॉमिक वाला एरिया है। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया, हर पेशेंट भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 अगर लिए हैं तो 450 में 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किया, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाएगी।
0: वहीं अध्ययन की जानकारी देते हुए आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब बीमारियों और उनके कारणों को लेकर शोध किया जा रहा है।
2: हमने एक जनसंख्या आधारित गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है, जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया।
0: ऊना जिला का हरोली विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बन गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज क्षेत्र में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 60 महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों पर 195 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 2400 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेंटर आधुनिक व तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अग्निहोत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस ये व्यवस्था अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के साथ साथ आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज कोलकाता में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 7 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया तीसरे सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे विधायी कार्यों के साथ गैर सरकारी सदस्य बिल पर सम्मेलन में मौजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की और उन्हें हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली व क्रियाकलापों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों की तर्ज पर स्तरोन्नत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपेक्षित व निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अति दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियों में जनसमस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बाद में जगत सिंह नेगी ने कल्पा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की समावेशी नीतियों व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया है। वे आज शिमला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित पोस्ट डिजास्टर रिव्यू सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के कारण बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। पंत ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन की सराहना भी की। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 49 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर लाहौल स्पीति में बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित जहालमा नाला में राहत व पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बना हरोली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव के पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग की आगामी एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
10: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ

0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से लेकर रात्रि के 8:45 तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

श्रोताओं, हवा महल में आज आप सुनेंगे पड़ोसी का कैमरा, ये प्रहसन। लेखक हिमांशु श्रीवास्तव, निर्देशक भगवान साहू।

0: ओह मिठाई लाल जी, ये दोनों हाथों में रबड़ी कपटी, खूब रबड़ी खाओ भाई, मौसम सर्दी का आ गया, यही वक्त है सेहत बनाने का।
1: अरे रे मनीष शंकर, अरे हाँ ये हैंडबैग आज क्यों इतना भारी?
0: कोई खास बात नहीं, एक कैमरा खरीदा है।
1: कैमरा?
0: हाँ।
1: यानी फोटो खींचने वाला कैमरा?
0: हाँ भाई, जमाने से सोच रहा था कि।
1: अरे दिखलाओ भाई दिखलाओ, जरा कमाल कर दिया तुमने।
0: यहाँ राह में दिखाऊं यार?
1: अरे यार आज इतवार है, कई दुकानें बंद है, चलो किसी दुकान की।
0: अरे रे कल वल देख लेना, कैमरा है बस, कोई अचंभे का बच्चा तो है नहीं। अभी जाओ रबड़ी खाओ, कई कपटी हाथ से छूट पड़ी तो।
1: अच्छा भाई।
2: मुक्ता, ओ मुक्ता
3: आई।
0: अरे भाई जरा इस बैग को होशियारी से पकड़ो तो।
3: क्यों क्यों, क्या है बैग में और कहाँ रह गए इतने देर? रविवार को भी घर से बाहर, सर्दी गिरने लगी और समय भी।
0: कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, 7:00 यही कोई 48-49 मिनट।
3: अरे बैग तो थोड़ा भारी लगता है।
0: अरे संभाल के संभाल के मुक्ता।
3: क्या होगा, कोई अच्छी सी साड़ी या ब्लाउज पीस?
0: बस बैग मत खोलो और समझ जाओ कि इसमें क्या है, तो मान लूं कि हो लाल बुझक्का।
3: और जनाब मैं हार मान लूं तो मेरी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी?
0: तो मान लो हार।
3: मानती हूँ।
0: इसमें कैमरा है मेरी जान।
3: सचमुच?
0: हाँ बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या देख लो निकाल के।
3: अच्छा, अरे ओहो ये तो बहुत अच्छा है, चलो अच्छा किया, तुम्हें बहुत दिनों से एक कैमरा लेने का शौक था।
0: देखो डार्लिंग, इसके लिए मैंने वो पैसे बटोर के रखे थे जिन्हें तुम मेरी जेब खर्च के लिए देती थी।
3: अच्छा,
0: खुश होना।
3: क्यों नहीं, मैं तो खुद सोचती थी कि किसी तरह तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाए। अच्छा चलो खाना खा लो, रोटी ठंडी हुई जाती है।
0: अच्छा चलो।
4: घर में हो भाई यार?
0: ये तो बेखबर वॉच रिपेयरिंग हाउस वाला है, क्यों मुक्ता?
3: हाँ नजाकत हुसैन।
0: ये तो भयानक गप्पी है, चाय भी न पी सका। और अच्छा खैर तुम उसे भी चाय पिला देना, और रसोई की तैयारी।
3: अच्छा पहले दरवाजा तो खोल दो।
4: भाई बाबा क्या कहने हैं, मुबारकबाद देने आया हूँ।
0: अरे काहे की मुबारक नजाकत साहब,
4: आपके भी नखरे का जवाब नहीं भाईजान, रात अच्छा खासा नया कैमरा ले आए।
0: कैमरा? ओह कैमरा, आपसे किसने कहा?
4: अरे कहेगा क्या कोई दुश्मन, दुश्मन तो सुनकर बस चलेगा ही।
3: आखिर हम भी तो सुने सही।
4: हाय हाय भाभी साहिबा के भी क्या कहने हैं, कुर्बान जाऊं। अरे ये जो अपना पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाई लाल, उसी ने बतलाया। खैर कोई बात नहीं, मणिशंकर भाई।
0: हाँ।
4: आज सूरज डूबने से पहले मेरे दोनों बच्चों की तस्वीर।
0: बच्चों की तस्वीर?
4: हाँ हाँ हाँ, दुकान में अपनी सीट के सामने फ्रेम कराकर लगा दूंगा।
0: अरे मुक्ता इन्हें चाय पिलाओ भाई। अच्छा भाई दोनों बच्चों की तस्वीर तो खींच दूंगा, मगर फिल्म और धुलाई का खर्च।
4: बस बस बस बस, ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात यकीन करने को नहीं कि तुम मुझसे इनका खर्च लोगे। तो भाई रही बात पक्की? क्यों?
0: अच्छा रही पक्की।
4: अच्छा तो मैं चला।
3: अरे चाय तो।
0: अरे जाने भी तो, लाओ एक कप मैं पी लेता हूँ और एक कप तुम पी लो।
3: कौन?
5: मैं हूँ गुरु घंटाल।
3: अरे राम ये तो अपने मकान मालिक हैं।
0: तो खोल दो दरवाजा और तुम भीतर चली जाओ।
3: अच्छा।
6: जय राम जी की मणिशंकर बाबू, कहिए क्या हाल चाल है?
0: बस दुआ है आपकी, कहिए कैसे कृपा की।
6: अरे भाई सुना कि कैमरा लाए हैं आप।
0: जी हाँ ले तो आया हूँ।
6: बस तो बच्चों का मन रख दीजिए, मेरी बेबी भी चाहती है।
0: क्या चाहती है?
6: बात यह है कि कल मेरी छोटी बच्ची अपनी गुड़िया का ब्याह पड़ोस की लड़की के गुड्डे से रचा रही है।
0: अच्छा अच्छा।
6: मत पूछिए, बहुत से लड़कों का हुजूम रहेगा।
0: हाँ।
6: करीब 8:00 रात में आप उसी अवसर पर सिर्फ 15-20 फोटो।
0: मगर गुरु घंटाल जी रात को फोटो लेने के लिए तो फ्लैश लाइट चाहिए, और वो तो मेरे पास है नहीं।
6: अजी साहब तो कौन बड़ी जमा पूंजी लगती है, एक फ्लैश लाइट खरीद लीजिए, आपके और भी काम आ जाएंगी। तो रहा पक्का कल रात 8:00, भूलना नहीं। अच्छा तो मैं चलूं।
3: क्या कह रहे थे, शायद फोटो लेने की बात?
0: मत पूछो, समझो कि मैं मर गया। अच्छा मुक्ता एक बात तो बताओ, रखती हो कुछ अपने पास?
3: मतलब?
0: कुछ पैसे हैं, फ्लैश लाइट खरीदनी है।
3: थोड़े से पैसे रख छोड़े हैं, दे दूंगी।
0: अरे भाई मकान मालिक है, और हाँ रसराज को भी तो फोटो देना है, स्टूडियो में धुलने और प्रिंट करने को दे आया हूँ, पैसे ही नहीं है कि लाऊं, और रसराज है कि सुबह शाम तक अदा करता है।
3: अच्छा वो कवि महोदय, धुलाई और प्रिंट के पैसे क्यों नहीं मांग लेते तुम?
0: अरे भाई वो कवि है ना।
3: मगर मुझे उस रोज एक बात अच्छी नहीं लगी।
0: क्या?
3: वो मेरे साथ फोटो लिवाने को मचल गया। हाँ। और तुम भी तैयार हो गए, अपने दोस्तों को दिखाएगा और।
0: अरे राम राम राम राम, रसराज ऐसा नहीं कर सकता, कितना आदर करता है तुम्हारा।
3: कोई आया है
0: देखो तो सही।
4: जयराम
1: राम जी की मनी शंकर भाई।
0: ओहो जय राम जी की, जय राम जी की। कहिए मिठाई लाल जी, कैसे कैसे पधारे?
1: अरे भाई तुम फोटो खींचने का कैमरा क्या ले आए, मुझसे नाता ही तोड़ लिया। कवि जी की तस्वीर ली गई, मकान मालिक गुरु घंटाल जी की बेटी ने गुड़िया का विवाह रचाया तो उस अवसर की तस्वीरें ली गई, और क्या नाम है नजाकत हुसैन के बच्चों की तस्वीरें उतारी, और फिसड्डी पड़ा तो मैं।
0: क्या गजब हो गया, कहो भी तो।
1: अरे भाई मुझे क्या घर परिवार नहीं है, क्या मैं अरमानों की दुनिया से दूर हूँ, या कि तुम मेरे पड़ोसी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा कौन कहता है भला।
1: तो फिर आज तुम दफ्तर से सूरज डूबने से पहले आ जाओ, मेरे बच्चे और बच्ची की तस्वीर खींच दो, बच्ची को राधा और बच्चे को कृष्ण।

0: का मेकअप कराऊंगा।
1: मगर बात यह है मिठाई लाल जी कि फिल्म धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
0: जी हाँ जनाब,
1: जैसे वे आपके बच्चे ही नहीं। छोड़ो ये चोचले, बस आज शाम याद रहे, सूरज डूबने से पहले मैं उन्हें तैयार रखूंगा।
2: हे भगवान, ये कौन पहुंचा?
3: दरवाजा खोलिए भाईजान।
1: आदा वर्दे नजाकत भाई।
3: भाई माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए।
1: क्यों, क्या हुआ? आज तो तेवर ही बदले हुए जनाब के।
3: भाई साफ इनकार कर जाते तो अच्छा था। बच्चों की तस्वीर क्या ली, सब कूड़ा कर दिया। खुदा की कसम, चार रोज तस्वीर लगाई नहीं कि उनका प्रिंट ही उड़ने लगा। लोग कहते हैं पड़ोसी के साथ मुरव्वत करो, मिल तो गया नतीजा मुरव्वत का। आकर दुकान में ले लेना वो तस्वीरें। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
2: ये तो अच्छा अंजाम मिला मुफ्त तस्वीर खींचने का।
1: खैर क्या करना है, तरह तरह के लोग हैं। अच्छा मुक्ता, जरा वो मेरा बैग तो लाना। कल बंबई से तुम्हारी बड़ी जीजी का पत्र आया है। है तो वो मेरी केयर ऑफ, मगर लिखा है पर्सनल। निकाल के पढ़ लो। और हाँ, एक मैगजीन भी रखी है, उसमें लाना तो जरा।
2: अभी लाती हूँ।
1: पढ़ लिया पत्र? सब ठीक ठाक तो है ना?
2: हाय, ये तो गजब हो गया। जरा वो मैगजीन तो खोलना, पेज 19।
1: क्या बात हुई?
2: अरे, उस पत्रिका में कवि रसराज ने वो तस्वीर छपवा दी जो मेरे साथ ली थी उसने।
1: सच?
2: हाँ, देखो तो सही।
1: ये तो रहा पेज 19 है, रसराज की कविता छपी है इसमें, मिलन वेला। ठीक वही फोटो, नीचे छपा है कवि जीवन संगनी के साथ।
2: और ये पत्र पढ़ो, जी जी क्या लिखती है।
1: प्रिय मुक्ता, तुमने जो गलत कदम उठाया उसके लिए हम लोग समाज और बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भला मणिशंकर में क्या गुण था? मणिशंकर अगर तुम्हारे पास मेरा ये पत्र पहुंचा दे तो फौरन उत्तर दो कि क्या मामला है। मैंने पिताजी से भी इस बारे में सही खबर देने को कहा है, उन्हें तो बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मैगजीन के प्रति भेज रही हूँ जिसमें तुम्हारे कवि पति के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी है। अरे राम राम राम, इस रसराज ने तो मार डाला हमें। देखो तो सही कौन आया है मुक्ता।
3: अजी क्या हुआ उन तस्वीरों का मणिशंकर जी?
1: वो बात यह है गुरु घंटाल जी, वो बात यह है कि तस्वीरें तो 15-20 हैं और उनकी धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
3: दिल में कालापन क्यों रखते हैं साहब? उस रोज तो फ्लश लाइट का रोना रोते रहे। मकान में जब आए थे तो कहा था भाई बनकर रहूंगा, और अब बच्चों के लिए 10-5 का भी मुंह देखने लगे।
1: जी हर महीने एडवांस किराया देता हूँ, इतना ताप क्यों सहूं?
3: तो मत सही है ताप, बड़े मातवर है तो मकान खाली कर दीजिए। जब मकान मेरे पास तो बहुत किरदार मिलेंगे। मकान किराए पर क्या दिया था, कोई पगड़ी नहीं ली थी। मुझे ऐसा जुबानी भाई नहीं चाहिए। कब करते हैं मकान खाली?
1: बस जितनी जल्दी होगा।
3: तो बस जल्दी करें, मैं टूलेट की प्लेट टांगने जा रहा हूँ। जयराम जी की।
1: जयराम जी की।
2: ओफो, तुम तो बुरे फंसे कैमरा लेकर। अच्छा मैंने तुम्हें रात बतलाया नहीं?
1: क्या?
2: वो पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाईलाल, वो लाहना देने आए थे। फोटोग्राफी नहीं खाक जानते हैं। राधा भी तस्वीर में गोरी आ गई और कृष्ण भी गोरा आ गया। बेटी तो उनकी एक आंख से कानी है, कहने लगे ज्यों की त्यों तस्वीर उतार कर बच्ची का मजाक उड़ाया है।
1: हे भगवान, कहां से ये कैमरा खरीद लिया मैंने?
2: और अपने कवि मित्र रसराज से नहीं पूछोगे कि ये कांड क्यों किया?
1: उसकी याद मत दिलाओ मुक्ता, ऐसे नादान दोस्तों को मुंह नहीं लगाऊंगा कभी। अच्छा अभी चलता हूँ बाहर, एक मित्र के मकान का आधा हिस्सा खाली पड़ा है, तुम तब तक सामान संभालो, मैं चला।
2: और गुरु घंटाल जी तो?
1: मुक्ता भाभी माफ कर दो, इस कवि देवर को माफ कर दो। संपादक ने कविता के साथ छपने के लिए मेरी तस्वीर मांगी थी, मेरे पास अलग से अपनी कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ वाली तस्वीर भेज दी और संपादक को यह बतलाना भूल गया कि महिला का चित्र बचाकर काट ले तब छापे।
2: मगर हद हो गई कवि जी, मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है।
1: जो भी हो माफ कर दो भाभी, मैं तो शर्म से दुबला होता जा रहा हूँ। गम में आज दाढ़ी बनाई तो क्रीम नहीं लगाई, देखो आंखों में सुरमा तक नहीं डाला।
2: बस बस बस अभी भाग जाओ, कहीं वो आ गए तो।
1: चलो मुक्ता, ताना खड़ा है, सामान लगवाओ। कम वक्त कैमरे को भी बेच आया, उसके साथ जहाँ जाते के शोर होता पड़ा

अभी आप सुन रहे थे हिमांशु श्रीवास्तव का लिखा प्रहसन पड़ोसी का कैमरा। इसके निर्देशक थे भगवान साहू। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आपको याद दिला दें कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार रामलाल पर।

कल दोपहर 3 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। कल शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। कल रात 9:30 पर आज के फनकार कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। तो ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों के बारे में।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

लीजिए सुनिए अगला गीत, कविता कृष्णामूर्ति, करसन सरगतिया और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार है महबूब, संगीतकार हैं इस्माइल दरबार। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है शिव हरी ने। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़

0: उमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल, कविता कृष्णामूर्ति, केके और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है नुसरत बद्र ने, तर्ज है इस्माइल दरबार की, फिल्म का नाम है देवदास।

0: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, और समाचार संध्या के बाद रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
7: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
8: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

0: 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
1: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, और वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा, और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीज़ा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: फिल्म मेरे हुजूर लखनवी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शान और शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने।
1: बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी ये सच है, हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया ये भी सच है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि आप गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
2: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानियों ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, अब आप ये बताइए कि अख्तर।
2: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में किसी फिरदौस का नाम दे रहे थे।
1: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहम दिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे लीजिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत हम सुनेंगे आज मेघ मल्हार। और आज हम सुनेंगे शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन पर राग मेघ, और तबले पर संगत कर रहे हैं शाफत अहमद खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत हमने आज सुना मेघ मल्हार और हमने सुना शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनते हैं रोमांटिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले तमाम प्यारे श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कहिए कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम साथ साथ चलेंगे प्रेम, एहसास, यादों और मधुर संगीत की उस खूबसूरत दुनिया में जहां हर गीत दिल की धड़कनों से जुड़ जाता है। रात का समय, आसमान में चमकता चांद, ठंडी ठंडी हवाएं और मन में किसी अपनों की मीठी यादें, ऐसे ही सुहाने पलों को और भी यादगार बनाते हैं रोमांटिक गीत। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत के कुछ सदाबहार और कुछ रोमांटिक गीत जो प्यार के विभिन्न रंगों को बखूबी बयां करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल की इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, प्यार एक ऐसा एहसास है जो शब्दों से कहीं ज़्यादा खामोशी से महसूस किया जाता है। जब कोई हमारे दिल के करीब होता है तो उसकी मौजूदगी हर पल हमारे साथ रहती है। प्रेम का यही सुंदर भाव हमें अगले गीत में भी सुनाई देता है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से रोमांटिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। दो दिल जब एक दूसरे के सपनों में बस जाते हैं तो जीवन की राहें भी आसान लगने लगती हैं। प्रेम केवल साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशियां तलाशने का नाम है।

दोस्तों, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। कभी कभी दिल चाहता है कि समय वहीं ठहर जाए और वो खूबसूरत पल हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाए।

दोस्तों, कुछ गीत केवल संगीत नहीं होते, वे यादों का हिस्सा बन जाते हैं। समय बदलता है, लेकिन ऐसे गीत हमेशा दिलों में बसे रहते हैं।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम चांदनी रात यहीं संपन्न होता है। तो अपने रेडियो दोस्त प्रवीण को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपॉक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।